जी हाँ, संदेश आते हैं, इतने सारे सिंगर्स ने ये गीत गाया और दिल को छू लेता है। सोनू निगम की आवाज भी दिल तक पहुंचती है। और बात कर रहे थे हम बॉर्डर फिल्म के निर्देशक जीपी दत्ता साहब की।

दोस्तों, आपके भी बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और हम जरूर आपके संदेशों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बॉर्डर फिल्म की बात हो रही थी और एक किस्सा जो बहुत ही दर्दनाक है इस फिल्म के साथ जुड़ गया था, जिसने बहुत दुखी कर दिया था जेपी दत्ता साहब को। कहा जाता है कि कहा क्या, ये तो हकीकत है वैसे तो, जब बॉर्डर फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो रही थी तो दिल्ली में हुआ था एक उपहार कांड। जी हाँ, उपहार सिनेमा में जो कि खचाखच भरा हुआ था इस शो को देखने के लिए, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और इस हादसे के बाद जो भयानक आग लगी थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और इस घटना से जेपी दत्ता साहब काफी दुखी हुए थे। जेपी दत्ता जी ने काफी एक्शन पैक्ड देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बनाई हैं और दर्शकों के दिलों में इतना जोश भर देती हैं उनकी फिल्में कि सिनेमा घरों में भी भारत माता की जय के नारे लगाने लग जाते थे दर्शक। तो ऐसे निर्देशक को दिल से सलाम जिन्होंने हमेशा फौजियों का, उनकी हिम्मत का, हौसले का, एक तरह से कहना कि सराहना की लोगों के सामने, उनके जज्बे को रखा, मुश्किलों को, कठिनाइयों को, उन सबको लोगों के सामने रखा कि इतनी आसान नहीं है बॉर्डर पर जिंदगी या एक सिपाही की जिंदगी। तो अगली ही एक और फिल्म जो कि जेपी दत्ता साहब जी की ही फिल्म थी LOC कारगिल, जो बनाई थी उन्होंने, उसी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो आप सबके लिए हमारी तरफ से।

दोस्तों बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, आपके संदेशों को भी शामिल कर रहे हैं हम जल्दी ही। और सबसे पहला संदेश, एयरपोर्ट वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश, नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक और संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज से, कुमारी देवी का चौधरी।

0: ये गीत हमें दिल तक छू जाता है। और सच में ये जो फिल्म थी ना एलओसी कारगिल, सबको रुला गई।
1: बस इतना याद रहे
0: एक साथी और भी था। दोस्तों ये गीत हमें जिंदगी की सच्चाई भी बयां करता है कि हमें कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। और सच में फिल्म के नजरिए से देखा जाए तो जो सरहदों पर हमारे साथी सरहदों पर रहते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, ना धूप छांव की परवाह, ना बरसात की, ना गर्मी की, ना बर्फ की, तो उनको तो ये ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। सरहदों पर रहना इतना आसान नहीं है। कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, सीधे दिल पर जाकर

दस्तक देते हैं और ये गीत उन्हीं गीतों में से एक है। आंखें नम हो जाती हैं और पुराने पन्नों की यादें खुद ब खुद पलटने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का दस्तूर भी यही है ना कि रात के बाद सुबह आती है और आंखों के बाद एक मीठी सी मुस्कान। अगर इस गाने ने आपके भी दिल के किसी कोने को छू लिया है तो घबराइए मत, क्योंकि पुरानी यादों को ताजा करना भी जिंदगी को जीने का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और साथ ही साथ जरूर कहूंगी आपसे कि जो सरहदों पर हमारे सिपाही दिन रात रहते हैं उनका शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें, ना शुक्रे ना बने, ये ना कहें कि ये तो उनका काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम ये सुनते हैं तो क्या हुआ, ये तो उनका काम है। इतना आसान नहीं है उस सरहद पर खड़े हो जाना, सीना चौड़ा करके छाती तान कर गोलियां खाना या 24 घंटे अलर्ट रहना।

और दोस्तों बहुत सारे संदेश ही हमारे साथियों के आ चुके हैं और कुछ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारे संदेश अभी तक भी शामिल नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों आपके संदेशों को भी हम जरूर शामिल करेंगे। देखिए आज हमने आपको सवालों में नहीं उलझाया, तो सोचा कि क्यों ना आज शांतिपूर्वक आपको भी हम गीत ही सुनने देते हैं, ज्यादा आपकी दिमाग की कसरत न करा के अब जल्दी से आपके संदेशों को हम जरूर शामिल करेंगे। मोहम्मद सईद आवासी जी हैं, इनका संदेश पहुंचा है ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटे बुलंदशहर से। निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान आवासी के तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। और साथ ही साथ भारत भूषण जी हैं, इन्होंने व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांधु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष और नंदनी जंघेल की तरफ से भी ये संदेश हम तक आया है। सभी साथियों ने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा और कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार जी ने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इन्हें और गीत भी पसंद आ रहे हैं। तो दीजिए आपका नाम भी हम इसी गीत में, जो अगला गीत है ये बहुत खूबसूरत है, आपको भी जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तहे दिल से मेरी तरफ से, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं और अपने रिव्यू भी देते हैं, जो कि हौसला अफजाही करते हैं हमारी कि हम प्रोग्राम को और अच्छा सा करें ताकि आपको पसंद आए। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी हैं, इन्होंने भी कहा कि इसे गीत में शामिल करें। सीताराम कांगड़ा हैं, इन्होंने हमें संदेश भेजा एकता कॉलोनी रोहतक से, निखिल कांगड़ा और बबीता बोट और तन्वी बोट के साथ। ये क्या लिखती हैं ये देखते हैं हम। अनिल जो हैं हमारे कोहले और रियांश कोहले, छाया कोहले के साथ इन्होंने संदेश भेजा बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से। और देखिए संघर्ष फिल्म का गीत जो इन्होंने सुना उसी दौरान इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया था, बहुत बहुत शुक्रिया। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद्र मल्होत्रा जी की तरफ से संदेश है। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष

जा रहा नागपुर महाराष्ट्र से। और देखिए संघर्ष फिल्म का गीत जो इन्होंने सुना उसी दौरान इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया था, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद्र मल्होत्रा जी की तरफ से संदेश है। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का और कोयल भाविका सिक्का की तरफ से भी हम तक ये संदेश पहुंचा है। तो साथियों आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, सुनते रहें हमारा ये और आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी दोस्त सुषमा के साथ। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे साथियों ने नाम गलत लिखा है क्योंकि आपने सुना नहीं सही से, इसीलिए मैं हूँ सुषमा दोस्तों और आज मिल रही हूँ आपसे, ढेर सारी बातें कर रही हूँ। बोधराज खोरवाल है उत्तर नगर दिल्ली से, इनका भी बहुत बार संदेश आ चुका है मैं देख रही हूँ मेल में। कमला रानी और गीतिका भानु प्रकाश के साथ इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है। नीटू मल्होत्रा जी का भी संदेश हम शामिल कर चुके हैं। इसके अलावा कमल मरावी हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने प्रमिला नेहा और पुष्पराज ऋषभ मरावी के साथ कमल कांत के साथ भी ये संदेश हम तक पहुंचाया है। साथ ही साथ पंकज शर्मा हैं ये भेज रहे हैं हमें, इन्होंने संघर्ष फिल्म का जो गीत सुना उसने लिखा है कि ये बहुत सुंदर है लिखा इन्होंने, साथ में ये मॉडल टाउन करनाल से संदेश भेज रहे हैं। नूतन, सुधीर, संदीप गुगलानी, जगमोहन और प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर और डॉक्टर सना इब्राहिम जी के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। इससे पता चलता है कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम के दौरान आप सुन के संदेश भेजते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी ने संदेश भेजा है पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, और इनका भी पहले गीत पर ही हमारे पास संदेश आ गया था। ज्योति मक्कड़ मन्नत और भारत मक्कड़ के साथ इन्होंने संदेश भेजा। अनिल जैन जी का संदेश हमें मिला है मालियान, सरधना मेरठ से जैन साहब और संयम जैन, मुस्कान दिव्यम जैन के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। इसके अलावा और कौन से साथी हैं भाई, रामेश्वर जी हैं जिन्होंने संदेश भेजा, ये लिखते हैं कि नमस्कार, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। ये कहते हैं कि हम प्रोग्राम सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहते हैं कि आज इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। मुंगेशापुर कानपुर देहात से इनका संदेश आया है। उमाकांत कठेरिया, कमलेश और निशा प्रज्ञा प्रतिमा और बाबू कठेरिया के साथ तथा इन्होंने अपने समस्त परिवार के साथ भी ये संदेश हम तक पहुँचाया है। तुलसी मस्कीन जी हैं, इन्होंने भी संदेश लिखा है कि उनके साथ आज ये लिख रहे हैं कि लंदन यूके से इनके कुछ दोस्त आए हुए हैं जिनके साथ ही आज घूमने जा रहे हैं। तो आज आप मस्ती करें, खूब सारा एंजॉय करें और लंदन के अपने दोस्तों को भी दिल्ली के चटकारे चस्के और जो भी दिल्ली की खूब सारे कहते हैं ना चाट भंडार और अच्छी अच्छी शॉप्स हैं वो जरूर दिखाएं उन्हें। बिहारी कॉलोनी शाहजरा दिल्ली से इन्होंने बीना मस्कीन के साथ और यूके से जो इनके साथी आए हैं नरेश सोनी उनके साथ ही ये संदेश हम तक पहुंचाया है। नारायण खर्चे जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं। खर्चे जी अगर आपने सुना होगा तो ध्यान से। हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने भी हमें संदेश भेजा है और इन्होंने भी क्या लिखा है भी देखते हैं, इनके संदेश में कुछ नहीं सिर्फ ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। स्टेशन रोड जमशेदपुर से इन्होंने संदेश एंजल और सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया के साथ हम तक पहुंचाया है। भारत भूषण का संदेश भी है हमें जो कि हम शामिल कर चुके हैं। और दोस्तों और भी संदेशों को शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले आप सुने ये बहुत ही खूबसूरत गीत तमाशा फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। और एक और संदेश मैं देख रही हूँ कि आंखों में कुछ महके हुए राज हैं आप से भी खूबसूरती आपकी शायद वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं किसी गाने का, तो अलिंका डबवाली से बसंत सिंह चन्न और राजकुमार कुलदीप गांधी ने संदेश पहुंचाया।

जी हाँ, गम तो फिसल जाता है जब अच्छे साथी मिलते हैं। और देखिए, निराशा देने वाले, जो निराश करते हैं हमें लोग, ताने मारने वाले, उल्टी पुल्टी बातें करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव थिंकर्स को रखिए जो आपको मोटिवेट करे, और चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, उन मुश्किल हालातों से आगे बढ़ने के लिए वो हौसला अफजाई दे और हमें भी हिम्मत बढ़ाए। तो ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए, ये हम जरूर कहेंगे। और ऐसे बहुत ही खूबसूरत गीत जब हम सुनते हैं तो ये मोटिवेशन हमें जरूर मिल जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम आपकी पसंद, जी फिल्मी गीतों पर आधारित एक कार्यक्रम है। और आज आपके साथ है आपकी दोस्त सुषमा। तो अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं, ये है हमारे साथी कौन है अभी लकी लिसनर इस गीत के बाद, जी संजय ढींगिया। संजय ढींगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से नमन और अपार ढींगिया के साथ अपना संदेश भेजा। सबसे बड़ी बात कि सभी साथी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। अंकित कागड़ा का भी संदेश आ चुका है और आप सभी का संदेश में शामिल कर चुकी हूँ। अक्रम जी हैं ये, महसौल सीतामढ़ी से ये संदेश आया है।

अकरम हुसैन का, इन्होंने इशरत अकरम और रुबीना वसीम, आरिज नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी और कलेर बिहार से भी अपने साथी मोहम्मद आसिफ और निकहत परवीन के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है। चरण दास जी का संदेश है, राजू अग्रवाल और विवेक के साथ इन्होंने संदेश भेजा है, ग्राम चौधरी वास, जिला हिसार, हरियाणा से। अगला संदेश मैं देख रही हूँ ये है निसार अली जी का, इन्होंने धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से ये संदेश नौशाद सलमानी और आलिया और आयान के साथ हम तक पहुंचाया है। और अगला संदेश जो मैं देख पा रही हूँ वो है सतबीर सिंह जी का, इन्होंने बिजरानिया से शायद ये संदेश भेजा है, मतलब गांव खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से। अभिषेक, योगेश, राजपाल, पूजा, आज नव्य बिजरानिया की तरफ से इन्होंने ये सब की तरफ से संदेश भेजा है, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। मोहम्मद सादिक जी हैं, इन्होंने भी संदेश हमें भेजा है और ये कहते हैं कि अहमद शाकिर अलकमा खत्री और अलतमस खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री तथा जामा मस्जिद रोड से लोला मानी और उमर कासमी अयूब शेरी के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमें सुन रहे हैं, अपने साथियों का भी आपने ध्यान रखा है तो हमारा भी ध्यान आप जरूर रखते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये है फागुराम यादव जी, संबलपुर कांकेर से इन्होंने संदेश भेजा, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव के साथ। सभी तो सुने आज अपनी पसंद के गीत सुनना चाहें क्योंकि आज हमने इन्हें सवालों में नहीं उलझाया है जी, बड़ी आज हमने सोचा क्यों ना आज आपको आराम दें। तो ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही जी का भी, गुलाम साविर राही जी का महराज जहां के साथ लक्सर हरिद्वार से उत्तराखंड से संदेश आया है। नीटू मल्होत्रा जी का भी संदेश आ चुका है, देखिए बार बार संदेश आते हैं तो कुछ साथियों के संदेश रह जाते हैं। लालगिरी का संदेश है, लालगिरी गोस्वामी जी ने भेजा, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी के साथ, रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर, राजस्थान से। इसके साथ ही विनोद ये है, विनोद जी ने गांव वनवाला हनवंता फाजिलिका पंजाब से भेजा है, सीमा, लक्षिता और याशिका, विद्या देवी और मायल परिवार की तरफ से ये संदेश। इसके साथ साथ अगला संदेश देख रही हूँ बबलेर पंवार जी का है, पारसमणि रेडियो श्रोता संघ से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, डैनी पंवार, मनीष पंवार की तरफ से और खलीफों की बावड़ी से इन्होंने भेजा है, राम देवरा से दिनेश चौहान का संदेश भी इन्होंने भेजा है और इन्होंने जेपी दत्ता जी की फिल्म का जो गीत इन्होंने सुनवाया था वो बहुत पसंद आया, इन्होंने लिखा है। योगीराज मस्के हैं, इन्होंने भी गांव भिटोड़ा भयोर तहसील पूरा इन्होंने लिख के दिया है, बाशिम पश्चिमी विदर्भ से संदेश भेजा है, महाराष्ट्र से शायद। तो ये है इंदुमती मल्हार, कविता, मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद मस्के और इन्होंने अन्य साथियों के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया और ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनना चाहते हैं जो कि इन्होंने अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाया है। इसके अलावा मुकेश बट्टा हैं जिन्होंने नीलम और निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा के साथ संदेश हम तक पहुंचाया मोहल्ला पटियाला से। अच्छा लगता है देश के अलग अलग हिस्सों से हम तक संदेश पहुंचते हैं। सुदर्शन शाह का भी संदेश नेपा नगर मध्य प्रदेश पद्मा टॉकीज के पास से आया है, इन्होंने अपने साथी कुशल शाह, प्रखर, नीति, आश्विन, मंगलावेन और राजेंद्र जी के साथ भेजा है। इसके साथ अशोक दले जी हैं जिन्होंने भी अपना संदेश सप्तरंग श्रोता परिवार संघ की तरफ से, कुम्हार गली श्रीरामपुर से, सविता दले, अनिता केत, अनिकेत और ऋषिकेश जीविका और पुनावले से, अजय सोनवने और करिश्मा सोनवने के साथ संदेश हम तक भेजा है, अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। मुकेश कश्यप जी का भी संदेश आया है, ग्राम दुल्हापुर से उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, राजपाल, पंकज, सुरेश, शीतल और कश्यप के साथ ये संदेश भेजा है। मशरूर हसन जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है और सहारनपुर से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया अपने साथियों के साथ। दोस्तों समय कम है इसलिए अब जितने संदेश मैं शामिल करूंगी आप कोशिश रहेगी कि आप सबके संदेशों को मैं जरूर शामिल करूं, लेकिन साथ ही साथ आप ये सुने जुबैदा फिल्म से बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही मैसेज भी शामिल करूंगी।

0: बसंत कुमार जी का भी संदेश आया है हमारे पास फील्ड मंगलौर से अजय कुमार गुप्ता और अन्विका तनुश्री गुप्ता के साथ। अहमद फूल वाले जी का संदेश भी आया है हमारे साथ समस्त परिवार की तरफ से, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई में ये रहते हैं, अपने परिवार के साथ वहां से संदेश भेजा इन्होंने। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ रमेश चौहान हैं जिन्होंने अपना संदेश जोधपुर राजस्थान से, मोहिनी चौहान, कल्पित और गर्भित तथा हिमाक्ष के साथ भेजा है। गुलाब दास माणिकपुरी जी का भी संदेश आया है और ये कह रहे हैं कि हम अपने धान के खेतों को देखने अपने प्लॉट में हैं और वहीं आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत बहुत बहुत। अब तो हम अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच गए हैं। लेवाई छत्तीसगढ़ से इन्होंने संदेश भेजा दास माणिकपुरी और रानी मानपुरी के साथ। तो देखिए हमने कहा था ना, चाहे आप धान के खेत में हो या कहीं खलिहान में या पहाड़ पर, सब जगह हमारे साथी काम करते करते भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये है जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश महेश और प्रज्ञेश प्रीतेश संघई और पूरे परिवार की तरफ से इन्होंने संदेश भेजा है। आर कुमार जी का भी संदेश हमें पहुंचा है बड़िंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस और पिंकी लवली आरती अरोड़ा के साथ। और देखती हूँ चलते चलते जितने साथियों के संदेश आए जरूर कोशिश करूंगी इन्हें शामिल करूं। सुदर्शन मुखी जी का संदेश मैं देख पा रही हूँ अनीता और सिमरन मुखी के साथ इन्होंने भेजा है और इन्होंने लिखा है कि स्वस्थ रहें, तो आप भी स्वस्थ रहें, अपने ध्यान रखें। बबलेश जी का भी संदेश पहुंचा है, गुप्ता जी का भी संदेश गेंदा टोला बाजार छत्तीसगढ़ से पहुंचा, अंजलि और सोनी सुधीर वारके के साथ। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि स्क्रीन पर मुझे एक और संदेश दिखा है, इन्होंने लिखा है जख्मी कलीम और भुवन प्रकाश गौतम दबिरुल के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा और भी अन्य साथियों के साथ। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से सिद्धार्थ गोंडवाने जी का, रमेश चौहान और नरेंद्र शर्मा जी का भी संदेश हमें पहुँचा है कलानौर से, इन्होंने भी अपने साथियों के साथ संदेश भेजा है। साथ ही साथ डोल राणा जी का संदेश भी आया है नेहरू विहार दिल्ली से, इन्होंने लिखा है, जी हाँ डीबी राणा जी हैं ये। और दोस्तों अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि ज्यादा समय नहीं है तो अब आपसे विदा चाहूंगी। राघव बघेल जी का नाम भी शामिल करना चाहूंगी, सुभाष योगी हैं और रोजी डे क्रेस्टो, इन्होंने भी अपने साथियों के साथ संदेश भेजा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकालकर हमारा प्रोग्राम सुना, तो तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए इस कार्यक्रम से विदा, नमस्कार। श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुषमा शर्मा के साथ और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की सहायता से जरूरत से अधिक उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत वापस लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब ब्रिक के नाम से

0: तुर्की की नागरिकता लेकर अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित करवाया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रणवी उर्फ ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रणवी ने देश के लिए गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वे भारतीय महिला भी बन गई हैं। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहोद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वर्ष 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। उधर कुश्ती में सुजीत कलकल ने पुरुषों के 65 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और लवलीना बोरगोहेन ने भी स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत पदक तालिका में 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 77 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has achieved a historic milestone by securing the deportation of hardened narco-trafficking kingpin Navpreet Singh from Turkey. In a social media post, Mr. Shah said that Navpreet Singh continued to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nawab Virk. Congratulating all the agencies for the success, he said that Prime Minister Narendra Modi's government is committed to destroying every narco cartel before December 2029. Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policymakers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 11:10 और पूरे हो चुके हैं, पूरे लीजिए 20 सेकंड, और अब समय हो चुका है सबरस का। सबरस में आज आप सुनेंगे सबसे पहले भारती सिंह, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह और रोमा लैला तथा गुरदास मान के गाए गीत।

अभी आप सुन रहे थे सबरस। सबरस में आज आपने सुनी भारती सिंह, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गायक गजल, रूमा लैला का गीत और पंजाबी गीत गुरदास मान जी की आवाज में। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10:11:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वसुंधरा रतूड़ी का राग मधुवंती में गायन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमरीका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के

0: नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policy makers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President noted that India's ongoing economic reforms are rooted in the country's democratic traditions and the process of consensus building. He said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
1: Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gopalak Sammelan in Bhopal. Mr. Shah will also address the gathering. A state-level Gopalak Sammelan is being held at the Bhel Dashehra Maidan in Bhopal. Mr. Shah will honour women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana. The United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader in solar energy. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that chartered accountants have a pivotal role in strengthening India-US economic partnership by helping businesses navigate

0: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
1: मंजुला का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
0: बिल्कुल। और देखो मंजुला, सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, क्योंकि सकारात्मकता हमें उस ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति से भर देती है जो जीवन के हर पथ पर हमें आगे बढ़ाता है। तो इसी विचार के साथ कि हम जीवन में हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और जीवन के हर पड़ाव को सहजता से पार करते चलेंगे।
1: बहुत ही खूबसूरत बात। और प्रतिभा, आज है जितिया पर्व, माँ के प्रेम, त्याग और संतान की लंबी उम्र की कामना का पर्व। कहते हैं माँ की ममता से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, तो आइए इस पावन अवसर पर हर माँ के त्याग और प्रेम को नमन करें। आप सभी को जीतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आराधना।
1: और प्रतिभा कुछ रिकॉर्ड समय नहीं बताते, वे बताते हैं कि एक पीढ़ी ने जहां अपनी सीमा खींची थी, अगली पीढ़ी ने वहीं से दौड़ना शुरू किया। और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, भारत की पीटी उषा ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.42 सेकंड का समय दर्ज किया।
0: और फिर इस जो ये आंकड़ा था सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं रहा, भारतीय एथलेटिक्स की एक ऐसी दीवार बन गया जिसे अगली कई पीढ़ियां छूती रहीं लेकिन पार नहीं कर पाई। फिर आई कोयम्बटूर की विद्या रामराज
1: और 2023 के एशियन गेम्स में उन्होंने 55.42 सेकंड का समय निकालकर पीटी उषा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन शायद बराबरी उनकी मंजिल नहीं थी।
0: 2026 के एशियन गेम्स में नागोया में विद्या ने वही दौड़ फिर से दौड़ी और इस बार घड़ी रुकी 54.75 सेकंड पर,
1: यानी 42 साल पुराने रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड से 0.67 सेकंड आगे।
0: और इसी दौड़ के साथ विद्या भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में 55 सेकंड की सीमा भी पार की और नतीजा
1: भारत के लिए कांस्य पदक। और भारतीय एथलेटिक्स के रिकॉर्ड बुक में एक नया अध्याय। विद्या की रफ्तार यहीं नहीं रुकी दोस्तों, एक ही एशियन गेम्स में 3 पदक, मिक्स्ड

0: 400 मीटर रिले में रजत और महिला 400 मीटर रिले में स्वर्ण मिला।
1: और देखो अभी बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और यही नहीं, 42 साल के बाद महिला हॉकी टीम को भी इन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक मिला। और सभी पदक विजेताओं को देखो मंजुला, हम एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से
0: बधाई
1: बधाई देते हैं।

0: जग दे इंडिया भी। इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी हेमा सरदेसाई की।
1: और प्रतिभा, कभी सोचा है यात्रा से लौटकर हम वही इंसान क्यों नहीं रहते जो घर से निकले थे? दरअसल यात्रा सिर्फ नए शहर, पहाड़, समुद्र या खूबसूरत नजारे देखने का नाम नहीं है दोस्तों। यात्रा हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारा व्यक्तित्व भी बदलती है। हर यात्रा शुरुआत होती है जिज्ञासा से, मन में सवाल उठता है आखिर उस पहाड़ के पार क्या है, उस शहर के लोग कैसे रहते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली कैसी है। यही जिज्ञासा हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाती है।
0: बिल्कुल। और देखो फिर आता है रोमांच, अनजान रास्ते, अचानक बदलता मौसम और नई भाषा और कभी कभी मुश्किल परिस्थितियां। यही हम सीखते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती।

0: लेकिन हर परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। यात्रा हमें डर से ज्यादा साहस पर भरोसा करना सिखाती है
1: और धीरे धीरे यात्रा शौक से जुनून बन जाती है। अब सिर्फ जगह देखना पर्याप्त नहीं लगता, हम उसे समझना चाहते हैं। स्थानीय लोगों से मिलना, उनका खाना चखना, उनकी कहानियाँ सुनना, उनकी संस्कृति को महसूस करना, और यही यात्रा का असली आनंद है।
0: और फिर बनता है जुड़ाव,
1: कनेक्शन,
0: है ना। और अजनबी लोग दोस्त बन जाते हैं, अलग संस्कृतियाँ अपनी सी लगने लगती हैं, और हमें एहसास होता है कि दुनिया भले ही अलग अलग दिखती हो, इंसानी भावनाएं लगभग एक जैसी हैं।
1: यात्रा हमें भीतर से गहरा भी बनाती है। हम अपनी सुविधाओं, पूर्वाग्रहों और छोटी छोटी शिकायतों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमें समझ आता है कि दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं बड़ी है।
0: और आखिर में आता है सबसे खूबसूरत पड़ाव, परिवर्तन। यात्रा से बिल्कुल यात्रा से लौट कर हमारा सामान भले ही वही हो, लेकिन हमारी सोच बदल चुकी होती है। हम थोड़ा अधिक आत्मनिर्भर, थोड़ा अधिक सहनशील, थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी और सबसे बढ़कर थोड़ा बेहतर इंसान बन चुके होते हैं।
1: क्या बात है। तो अगली बार जब मौका मिले, सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए नहीं, खुद को थोड़ा और जानने के लिए भी यात्रा पर निकल पड़िए।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी अभिलाषा। और प्रतिभा त्योहारों का मौसम है तो साड़ी के साथ इस बार जरा आभूषणों का अंदाज ही बदलिए, क्योंकि हर साड़ी के साथ सोने का हार ही जरूरी नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला को मिलाकर भी बेहद खूबसूरत आपका लुक तैयार हो सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला तुमने। जैसे कलमकारी साड़ी की बात करें तो इसके साथ दक्षिण भारत की टेम्पल ज्वेलरी, लक्ष्मी हार, पारंपरिक झुमके या पुराने सोने जैसी नक्काशी वाले गहने, अजरक के साथ, हाँ अजरक के साथ चांदी का बड़ा हार गले में पहने और बड़े चांदी के झुमके या जनजातीय शैली के आभूषण बहुत सुंदर लगेंगे।
0: बिल्कुल सही। और कांथा के साथ बंगाल की तारकशी, डोकरा आभूषण, बनारसी के साथ कुंदन, जड़ाऊ, पोलकी या मीनाकारी के आभूषण बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर साड़ी बहुत हेवी है तो आभूषणों में से किसी एक को हाईलाइट कीजिए।
1: और देखो चिकनकारी की बात करें तो चिकनकारी की जो साड़ी होती है उसके साथ मोती, नाजुक कुंदन या छोटे पारंपरिक झुमके बेहद सलीकेदार रूप
0: आपको लुक देंगे,
1: बिल्कुल देंगे, है ना। और पैठनी के साथ ठुसी, कोल्हापुरी साज या पारंपरिक नथ और आपका पूरा रूप जो है वो महाराष्ट्र की झलक बन जाएगा।
0: हाँ, और बंधनी या लहरिया के साथ राजस्थानी बोरला, लाख की चूड़ियां, मीनाकारी के आभूषण उसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। संबलपुरी के साथ ओडिशा की तारकशी वाले चांदी के ज्वेलरी और कांजीवरम के साथ टेम्पल ज्वेलरी बहुत ही अच्छे लगेंगे।
1: और देखो एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगी कि आभूषण और साड़ी का बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी नहीं है, है ना। और कभी कभी अलग अलग राज्यों की दो कलाएं जब साथ आती हैं तो एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रूप बनता है।
0: बिल्कुल। तो इस फेस्टिवल आप प्रतिभा के इस टिप को जरूर याद रखिए। तो इस त्योहार सिर्फ सजिए नहीं, भारत की कला पहनिए, भारत की कारीगरी पहनिए और हमारे कारीगरों के मेहनत को भी अपने उत्सव का हिस्सा बनाइए।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म अभिमान से।
1: और देखो मंजुला, अब बात करते हैं शुरू से अपनी पहचान बनाने वाली एक प्रेरक आवाज की। जी हाँ, वाइकोम विजय लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। केरल की रहने वाली वाइकोम विजय लक्ष्मी जन्म से दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें देश भर में एक नई पहचान दिलाई है।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत सीखना शुरू किया और गायन के साथ साथ वीणा वादन में भी दक्षता हासिल की। वो गायत्री वीणा नामक एक दुर्लभ वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है।
1: मलयालम सहित कई भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी विजय लक्ष्मी को उनके संगीत के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। और विजय लक्ष्मी को मंजुला देखो हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और उन्हें ये सम्मान मलयालम फिल्म के गीत के लिए मिला है।
0: और उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, आत्मविश्वास और संगीत के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण मानी जाती है। उनकी कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें अपनी कमियों पर नहीं अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने हुनर और उसको अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि आत्मविश्वास, मेहनत और अपने हुनर पर विश्वास हो तो हर चुनौती को पार कर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे वाणी जयराम को फिल्म गुड्डी से।
1: और मंजुला देखो, हमारे देश के पास अपनी एक विरासत है और ये विरासत ना जाने कितनी कलाओं, परंपरा, संस्कृति और रिवाजों का बेजोड़ संगम है। और देखो, जब हम बात कला की करते हैं तो हर राज्य, हर क्षेत्र किसी न किसी कला को संजोए हुए है।
0: बिल्कुल सही। और ऐसी ही एक प्राचीन हस्तशिल्प कला है बंगाल बाटिक। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को बाटिक कला का मुख्य केंद्र माना जाता है।
1: और देखो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इस कला को इंडोनेशिया से भारत लेकर आए थे। में कपड़ों के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता वहाँ पिघला हुआ मोम लगाया जाता है और इसके बाद कपड़े को रंगा जाता है और मोम लगने से उस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ता।
0: बिल्कुल। और कारीगर इस कला का उपयोग करके खूबसूरत साड़ियाँ, दुपट्टा और फैब्रिक तैयार करते हैं। यकीन मानो, हर एक पीस अपने आप में अनूठा होता है क्योंकि मोम लगाने से कपड़ा रंग के ने मतलब मोम को हटाने तक का काम हाथ से किया जाता है। ये सारा का सारा हैंडवर्क होता है।
1: बिल्कुल। और देखो, हर एक कपड़ा कारीगर की कारीगरी की अनूठी मिसाल पेश करता है। बाटिक सिर्फ कला नहीं बल्कि बंगाल के कारीगरों की रचनात्मक परंपरा और हस्तशिल्प कला की पहचान भी है। तो अगर आप कभी बाटिक की साड़ी या दुपट्टा देखें तो उसे अपने वार्डरोब में जगह जरूर दें।
0: बिल्कुल देंगे।
1: और देखो, ये कलाकारों की मेहनत के लिए हमारी तरफ से, आपकी तरफ से एक सम्मान होगा, है ना?

0: बहारों के सपने। अभी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की।
1: तो सपनों की दुनिया से रियलिटी वर्ल्ड में आते हैं, और जीवन में संवाद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संवाद यानी आपसी जो कम्युनिकेशन होता है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संवाद बोलकर, इशारों से हो या फिर लिखकर हो, ये प्रभावी होने चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब हम लोगों के बीच होते हैं ना, तब संवाद बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में संवाद सार्थक हो, स्पष्ट हो और सम्मानपूर्वक हो तो संवाद प्रभावी के साथ साथ सफल संवाद माना जाता है।
1: क्या बात है। एक बेहतरीन संवाद केवल बोलने के बारे में नहीं होता है, बल्कि सामने वाले को समझने और अपनी बात को सही ढंग से पहुंचने की कला है।
0: बिल्कुल। और देखो, अपने संवाद के दौरान हमें सक्रिय श्रवण रखने की जरूरत है, यानी एक्टिव लिसनर हमें बने रहना चाहिए। साथ ही बात को घुमावदार तरीके की बजाय स्पष्ट और सीधे शब्दों में ही कहा जाए तो संवाद बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल सही। और बातचीत के दौरान सामने वाले की भावनाओं और परिस्थिति का सम्मान करना ना भूले, क्योंकि उनका जो नजरिया है वो भी मायने रखता है, जिसका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल ठीक मंजिला। और देखो, संवाद की एक और शर्त होती है, जो होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। बात करते समय आंखों से संपर्क, चेहरे पे मुस्कुराहट और आपकी सकारात्मक मुद्रा भी संवाद को प्रभावी और सफल बनाती है।
1: और एक जरूरी बात कि ये संवेदनशील या गंभीर विषयों पर बात करने के लिए गुस्से या तनाव की स्थिति में संवाद से बचें, यानी मूड खराब हो तो बातचीत थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो, ये छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा संवाद प्रभावी तो होगा ही, साथ ही आपको एक सौम्य और प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी बनाएगा। तो क्यों ना आज से ही पहल करें एक सफल और सार्थक संवाद की।
2: सुनो, कहा सुना।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आपकी कसम।
1: और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, बस अपने मन से बात कहने के तरीके को बदलने की जरूरत होती है। जापान के कुछ बेहद खूबसूरत विचार जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान उसे बदल देना नहीं होता है, कभी कभी उसे स्वीकार करने, उसे थोड़ा सा पीछे हटना और अपने अगले कदम, छोटे कदम पर ध्यान देना उसका समाधान होता है।
0: बिल्कुल, देखो कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जो हो चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे बार बार सोचकर हम अतीत नहीं बदल सकते। इसलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को जाने देना भी जरूरी।
1: बिल्कुल। और दूसरा, कितनी बार हम थकान को, चिंता, भूख को, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी को जिंदगी की समस्या समझ लेते हैं। कभी कभी मन को सलाह नहीं, बस खाना और नींद चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो, हर संदेश का तुरंत जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, हर खामोशी को भरना जरूरी नहीं है, जिंदगी में कुछ खाली जगह भी रहने देनी चाहिए, क्योंकि हर खालीपन को तुरंत किसी जवाब, किसी व्यक्ति या किसी शोर से भरना जरूरी नहीं है।
1: और ना कहना भी सेल्फ केयर है, हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर जिम्मेदारी उठा लेना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना आपकी अच्छाई का प्रमाण नहीं है दोस्तों। कभी कभी एक बिल्कुल क्लियर नहीं आपके समय, ऊर्जा और मन की रक्षा करता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। और शिनरिन योकू, जब मन बहुत शोर करने लगे, कुछ पेड़ों के बीच जाइए और उसे देखिए। प्रकृति हमेशा हमारे सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमारे भीतर का जो शोर है वो थोड़ा कम जरूर कर देती है।
1: बिल्कुल। और वाबी साबी तो सबने सुना है, एक गलती ये तय नहीं करती है कि आप कौन है। आपका कोई असफल निर्णय या कोई टूटा रिश्ता, कोई अधूरा सपना आपकी पूरी पहचान नहीं है दोस्तों। अपूर्णता भी जीवन का हिस्सा है और कई बार उसी में हमारी सबसे सच्ची खूबसूरती छिपी होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। देखो, और काइजेन की बात करें तो पूरी सीढ़ी को मत देखिए, बस एक कदम उठाइए। जब मंजिल बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी पतंग। और कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है। जाते जाते आज की छोटी सी टिप, हर दिन अपने लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालिए, फोन से दूर, शोर से दूर, बस अपने साथ, क्योंकि दूसरे का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना ना भूलें।
1: और देखो मंजुला, अभी हम अपने श्रोताओं को आज की प्रस्तुति का आखिरी गीत सुनवाएंगे फिल्म बातों बातों से, जिसमें आवाजें हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की।
0: तो फिर मिलेंगे एक नई बातचीत, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। दीजिए प्रतिभा को और मंजुला को इजाजत। नमस्कार।
2: उठे सबके कदम, देखो रंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब बिर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ्स एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ की इस खास फिल्मी सफर में मैं दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और प्रस्तुत है आपका मनपसंद सेगमेंट एक ही फिल्म से। सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। आज की फिल्म भी कुछ ऐसी ही है। एक ईमानदार प्रोफेसर, एक प्रभावशाली कारोबारी, उसका बिगड़ैल बेटा और कुछ ऐसे लोग जिनके इरादे नेक नहीं है, और इन सब के बीच फंस जाता है एक इंसान जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी ईमानदारी। आज हम याद करेंगे वर्ष 1981 की फिल्म बुलंदी। राजकुमार की दमदार अदाकारी, आशा पारे की गरिमापूर्ण मौजूदगी, डैनी डेंजम गप्पा की दोहरी भूमिका और आरडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, आइए इस सफर में शुरू करते हैं इसी फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की जो फिल्म है वो है बुलंदी। इस फिल्म में राजकुमार ने प्रोफेसर सतीश खुराना का किरदार निभाया था, एक आदर्श शिक्षक, एक जिम्मेदार पति और एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने ज्ञान और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। सतीश खुराना जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। उनके लिए शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों का ज्ञान देना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझाना भी जरूरी है। और साथ ही सतीश खुराना की जिंदगी में उनका परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। फिल्म में आशा पारेख ने सतीश की पत्नी सरला की भूमिका निभाई थी। तो श्रोताओं, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल सुरों में।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है सन 1981 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी है। अगर हम इस फिल्म के किरदारों की बात करें तो प्रोफेसर सतीश खुराना के रूप में राजकुमार है, आशा पारेख सरला खुराना के किरदार में है, रंजीत सिंह लोबो और मनजीत सिंह लोबो के रूप में डैनी जो कि दोहरी भूमिका में है, किम लीना खुराना के रूप में विक्रम, विक्की तेजा के रूप में राजकिरण, वीजू मोहंती के रूप में कुलभूषण खरबंदा, मदन तेजा के रूप में कादर खान, जीवन बाबूलाल भाकरी के रूप में राकेश बेदी, पवन भाकरी के रूप में। अगर हम इस फिल्म के कहानी की बात करें तो प्रोफेसर सतीश खुराना अपनी पत्नी सरला और बहन लीना के साथ रहते हैं और जिस कॉलेज में वे कार्यरत हैं वहां उनकी काफी प्रतिष्ठा है। एक दिन उनके मित्र विजय मोहंती ने फोन पर उनसे अनुरोध किया कि वे एक धनी व्यापारी रणजीत सिंह लोबो से मिले और उनके बेटे मनजीत को ट्यूशन दे। सतीश

पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन रणजीत से मिलने के बाद वे मान जाते हैं। मनजीत हर काम में समय का पाबंद था, लेकिन शुरू में थोड़ा घमंडी और जो आज्ञाकारी था वो थोड़ा कम था, पर सतीश से मिलने के बाद उसमें सुधार आ गया। ये देखकर रणजीत के मित्र मदन तेजा और बाबूलाल भाकरी भी अपने बेटों विक्रम और पवन के लिए सतीश से ट्यूशन का अनुरोध करते हैं। इसके बाद सतीश पर निजी ट्यूशन के माध्यम से प्रश्न लीक करने का आरोप लगता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब सतीश को रणजीत, मदन और बाबूलाल के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वे उनका इस्तेमाल अपने अवैध काम के लिए करना चाहते हैं।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। और हमारे पास भर भर के मेल्स आ रहे हैं, चलिए उनको हम शामिल करते हैं। जो हमारे पास पहला मेल है वो है भूषण खेरा का, फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार। इनके साथ हैं विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा। और जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का, इनके साथ है कविता गौर मेरठ कैंट से। साथ ही जो अगला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, गुरमीत सिंह का अगला संदेश है साउथ एक्सटेंशन से। और साथ ही शक मोहम्मद हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। जो अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का है, पिपरिया से श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता। आर कुमार वंडिंग खेड़ा से हमें लिखकर भेज रहे हैं, पंजाब से पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश है हरजिंदर शिंदे का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से। इनके साथ है जसवीर, जसी, सीता और गीता। तो श्रोताओ, आगे भी हम संदेशों को शामिल करेंगे, तब तक के लिए अपने सभी लिसनर्स को कहना चाहेंगे कि जो चाहते हैं कि उनका भी नाम शामिल हो वो हमें ipradiodelhi@gmail.com पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा जीमेल है ipradiodelhi@gmail.com।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ था और जो इसकी कमाई थी वो भारत में लगभग 2 करोड़ और दुनिया भर में 4 करोड़ थी, जिससे ये फिल्म काफी हिट घोषित हुई। इस फिल्म के गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। इसे 1985 में तमिल भाषा में निर्माई नाम से रीमेक किया गया था।

0: श्रोता हमारे पास और भी संदेश आ रहे हैं तो चलिए इनको शामिल कर लेते हैं। जो अगला संदेश है वो है संदीप मक्कर का, इनके साथ है ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से। जो अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का, इनके साथ है श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता, ये लिखकर भेज रहे पिपरिया से। झाग्गर राम साहू जी का अगला संदेश इनके साथ है जमुना जामुन देवी साहू, बबलू साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा देवी, आराध्या साहू, हमें लेकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और जो अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरांसी, जिला हिसार से। बिट्टू गजनेजा में संदेश भेज रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से। हीरा मणि वर्मा में संदेश भेज रहे हैं भाटापारा से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें लिख रहे हैं और आपका संदेश हम तक पहुंच रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, के साथ है नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और उन्हें भी ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। जो अगला संदेश है वो है धर्मेंद्र छीपा का और इनके साथ है कपिल छीपा, शान छीपा, पूजा परिहाल, भोपालगढ़ राजस्थान से। रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, जोन डिकैस्ट्रो हमें संदेश भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से। तो श्रोताओं चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का अंतिम गीत।
1: पवन बोल, हाय बहन, हाय, लेट्स गो,
2: या लेट्स गो।
0: अजीत भास्कर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है प्रमिला भास्कर, भावेश कुमार, सनी भास्कर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं वीरम गाम गुजरात से। और जो अगला संदेश है बसंत कुमार सिन्हा का है, इनके साथ है रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, और साथ ही ये जो अगला संदेश आया है वो आया है मेहर अरोड़ा का, इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। अगला संदेश जो है वो है प्रवीण हागुड़े का और इनके साथ योगिता हागुड़े, कुमारी प्रियाली, पार्थ हागुड़े और इनके परिवार के अन्य सदस्य, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है डॉक्टर प्रशांत और श्री सुधाकर राज्य, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं समस्त जाफराबाद से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। संजय ढींगिया का अगला संदेश

पंकज शर्मा का अगला संदेश है और ये हमें लिखकर भेजे मॉडल टाउन से नूतन संदीप और जगमोहन साथ ही अन्य लोग लालगिरी हमें लिखकर भेजे उनके साथ है हिमलता हिना हर्षित और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं श्रीगंगानगर राज्य।

तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एक ही फिल्म से कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेकर ठीक दिन के 1:10 पर। तब तक ले मुझे यानी आपकी दोस्त दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती नूं समाजिक मजबूती तो वक करके नहीं देखा जा सकता अते तेजी नाल बदलदी दुनिया च सारियां दी शमूलियत ही मजबूती दी बुनियाद है। सरकार ने नशीले पदार्थां दी तस्करी करन वाले मुख सरगना नवप्रीत सिंह नूं तुर्कीए तो भारत लियाउण च सफलता हासिल कीती। संयुक्त अरब अमीरात दे अटारनी जनरल कौंसलर डॉ हमद सैफ अल शमसी ने कहा फ्लाई दुबई उड़ान की जांच विच पाया गया कि सह पायलट ने दहशतगर्द कार्रवाई करने की कोशिश की थी। होरमुज जलमार्ग विच कुवैत के झंडे वाले टैंकर से हुए हमले तो बाद पांच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तौर पर बचा लिया गया है। अते भारत ने एशियाई खेडों च क्रिकेट के फाइनल विच पाकिस्तान 19 दौड़ा न हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। हुण खबरां विस्थार दे नाल। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती नूं समाजिक मजबूती तो वक करके नहीं देखा जा सकता। उन्हां कहा कि तेजी नाल बदलदी दुनिया विच समावेशता यानी रलवी मिलवी शमूलियत ही मजबूती दी बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन अज नवीं दिल्ली विच पंजवें कौटल्या आर्थिक सम्मेलन दे उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन कर रहे सन। सम्मेलन दा विशा सी बदलदे समें विच मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति समावेशी पहुंच अते मौजूदा हालात के अनुकूल नीतियां बनाउन नाल लोकतंत्र अते विकास इकट्ठे अगे वध सकदे ने अते निरंतर विकास लई मजबूत नींह रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि असल मजबूती इस गल नूं यकीनी बनाउन विच है कि कोई भी नागरिक उद्यम या खेतर पिछे न रह जाए। उपराष्ट्रपति ने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण लई समूहक यत्नां दा सद्दा दिता। श्री राधा कृष्णन ने तेजी नाल बदलदियां आलमी तरजीहां आधुनिक तकनालोजी अते वध रहियां जलवायु चुनौतियां दौरान आपसी सहमति नाल फैसला कुण निर्णय लैण दी लोड़ ते जोर दिता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संकट दे वेले सहमति ते आधारित फैसलियां दी लोड़ होर वध जांदी है। उन्हां कहा कि बहस अते चर्चा बेशक जरूरी ने पर अंत विच इसका नतीजा इहो जिहा होना चाहीदा है जो सारियां नूं प्रवान होवे। सरकार ने नशीले पदार्थां दी तस्करी करन वाले सरगना नवप्रीत सिंह नूं तुर्कीए तों भारत वापस लियांदा है। देश दीआं एजेंसीआं दी इस उपलब्धी नूं सांझा करदिआं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि नवप्रीत सिंह ने नवाब विरक दी जाली पछाण तहत तुर्कीए दी नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान तों भारत च हैरोइन अते मैथामफेटामाइन दी तस्करी कीती। सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विरक नां रख के तुर्कीए दी नागरिकता प्राप्त कर चुका सी। वह अफगानिस्तान तों भारत विच हैरोइन मैथामफेटामाइन ते होर नशे तस्करी करता रहा। उन्होंने एजेंसियां

0: श्री कौटल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव के इफ्तताही इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही। कॉन्क्लेव का मौजू है तेजी से बदलती दुनिया में मजाहमत। नायब सदर ने कहा कि इत्तफाक राय, शमूलियत और जिम्मेदारी पॉलिसी साजी से ही जमहूरियत और तरक्की साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असल मुजाहमत इस बात में पिन्हा होती है कि कोई भी शहरी, कंपनी या खित्ता पीछे न रहे। नायब सदर ने साल 2047 तक विकसित भारत के लिए तामीर के लिए इज्तमाई कोशिशों की अपील की।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वेयर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: जनाब राधाकृष्णन ने तेजी से बदलती आलमी तरजीहात, बदलती टेक्नोलॉजी और उभरते हुए माहौलियाती चैलेंजों के दरमियान इत्तफाक राय के जरिए फैसला साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहरान के दौरान इत्तफाक राय पर मबनी फैसलों की बहुत जरूरत होती है। नायब सदर ने मजीद कहा कि चूंकि बहसो मुबाहसे जरूरी हैं, लेकिन उनका सभी के लिए काबिल कबूल और आखिरी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत मनुष्यात की स्मगलिंग के एक बड़े मुलजिम नवप्रीत सिंह को तुर्किया से कामयाबी के साथ भारत ले आई है। मुल्क की नफाज कानून की एजेंसियों की इस कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह ने जाली शनाख्त नवाब बिक के नाम से तुर्किया की शहरियत हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथमफेटामाइन गैर कानूनी तरीके से भारत भेजता था। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका एजेंसियों ने मुलजिम का सुराग लगाया, इसकी असल शनाख्त बेनकाब की और उसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की। वजीर मौसूफ ने बताया कि नवप्रीत सिंह को मुनशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम से मुतालिक कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। वस्मत तालुका के पांगरा शिंदे इलाके में सुबह तकरीबन 9:43 पर 4.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इससे कबल सुबह 7:47 पर 3.3 शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद 4.5 शिद्दत का निस्बतन ताकतवर झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जलजले के कई हल्के झटके भी महसूस किए गए। हिंगोली शहर और जिले के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मकाम पर जमा हो गए। नेपाल में आज गंडकी सूबे में एक बस पलटने के वाकये में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक काठमांडू जाने वाली इस बस में 18 मुसाफिर सवार थे और ये वाकया नवलपरासी जिले के दून इलाके में पेश आया। जख्मी मुसाफिरों को इलाज मुआलजे के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के T20 फाइनल में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को 19 से हराते हुए सोने का तमगा जीता। यह मैच आज जापान के निशहिन में खेला गया। भारत की जानिब से दिए गए 212 रन के जवाब में पाकिस्तानी की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 22 गेंदों में 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने 96 रन बनाए, वहीं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अरफात मिनहाज और तेज गेंदबाज अहमद दालिया ने 2-2 विकेट लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के इंफरादी स्ट्रोक प्ले में सोने का तमगा जीतने और गोल्फ इंफरादी तौर पर पहला सोने का तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनने पर परनवी शरतूर्स को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि परनवी शरत उर्स ने भारतीय गोल्फ की तारीख में यह कारनामा अंजाम दिया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि सोने का यह तमगा भारतीय खवातीन के गोल्फ में संगे मील की हैसियत रखता है। सदर जमहूरिया ने परनवी शरत उर्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में आज भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इंफरादी रिकर्व जुमरे में हमवतन धीरज बोम्मा देवरा को 4-6 से हराकर कांसे का तमगा जीता। मर्दों की क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड चंडीगढ़

0: developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. Five Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bagged gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। बट इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया।

0: वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत चार साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया कि एक डेवलप विकसित देश और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाने के, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गाइनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक

0: सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वेयर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
2: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIRNewsHindi और Instagram पर AIRNews Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत के मुख्य

मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सामाइन आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज़ होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है। इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा अब से कुछ ही देर बाद, यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी, और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर सूबाई लोक गीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे हरियाणवी लोकगीत। शाम 4 बजे आप फिल्मी नगमे सुनेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

0: अब खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से सुनिए सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत देही मईशत की तरक्की के लिए मईशी परवरी पर मबनी पूरे इको निज़ाम को फ़रोग दे रही है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आज़ादाना तजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का अहाता करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है। अबनाए हुरमुज में कुवैत के परचम बरदार तेल टैंकर पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत बचा लिया गया है। और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराते हुए सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत गाय के गोबर को बायोगैस और नामियाती खाद में बदलने से लेकर डेयरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और उनकी मार्केट रसाई तक मवेशी परवरी के पूरे इको निज़ाम की तरक्की कर रही है ताकि देही मईशत को फरोग मिल सके। भोपाल में आज रियासती सतह के गौ पालक सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी की वजारत के क्याम से सबसे ज्यादा फायदा हासिल करने वालों में मवेशी पालने वाले शामिल हैं। निजाम इंसाफ की इस्तेहात से मुतालिक बोलते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के एक मरतबा पूरी तरह नाफिज हो जाने के बाद भारत का फौजदारी निजाम इंसाफ दुनिया का जदीद तरीन निजाम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि BNS के पूरी तरह से निफाज के बाद अदालती मामला FIR दर्ज होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तस्वीर तक 3 साल के अंदर अंदर निपटाए जा सकेंगे। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा है कि इक्तसादी मजाहमत को समाजी मजाहमत से अलग नहीं किया जा सकता और यही शमूलियत तेजी से बदलती दुनिया में मजाहमत की बुनियाद है। जनाब राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। कॉन्क्लेव का मौजू है तेजी से बदलती दुनिया में मजाहमत। नायब सदर ने कहा कि इत्तेफाक राय, शमूलियत और जिम्मेदार पॉलिसी साजी से ही जमहूरियत और तरक्की साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असल मजाहमत इस बात में पिन्हा होती है कि कोई भी शहरी, कंपनी या खित्ता पीछे न रहे। नायब सदर ने साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अपील की। जनाब राधाकृष्णन ने तेजी से बदलती आलमी तरजीहात, बदलती टेक्नोलॉजियों और उभरते माहौलियाती चैलेंजों के दरमियान इत्तेफाक राय के जरिए फैसला साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहरान के दौरान इत्तेफाक राय पर मबनी फैसलों की बहुत जरूरत होती है। नायब सदर ने मजीद कहा कि चूंकि बहस व मुबाहिसे जरूरी हैं, लेकिन उनका सभी के लिए काबिल कबूल और आखिरी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आजाद तिजारती माहदे ताल्लुकात का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिससे दुनिया भर की मईशतों का तकरीबन 75 से 80% हिस्सा शामिल किया जा सकता है। शिकागो में अमरीकी भारतीय कम्युनिटी फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुनक्कद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने हालिया बरसों में अपने तिजारती मुजाकिरात में खातिर ख्वाह वसत पैदा की है और कई मुजाकिरात अब भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस बढ़ते हुए नेटवर्क से भारत में मौजूद कंपनियों वसी बैनुल अक्वामी बाजार तक रसाई फराहम होगी। जनाब गोयल ने कहा कि 2014 से पहले भारत का दुनिया की मईशतों के साथ आज़ादाना तिजारती माहदे थे जिनकी मजमुई घरेलू पैदावार तकरीबन $10 खरब थी। अक्वामी मुत्तहिदा ने भारत की जानिब से 1.86 लाख करोड़ रुपए के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले GEC 3 को दी गई मंजूरी का खैरमकदम किया है। अक्वामी मुत्तहिदा ने ग्रिड को मजबूत बनाने वाली और बैटरी स्टोरेज की इस स्कीम को मुल्क के लोगों और मईशत के लिए बड़े फवायद फराहम करने वाले बड़े कदम से ताबीर किया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात के आज 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का पहला नशरिया आज ही के दिन साल 2014 में विजयदशमी के मौके पर नशर किया गया था। हाल ही में मन की बात का 138वां नशरिया पेश किया गया। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मन की बात ने मुल्क भर में रोनुमा होने वाली मुस्बत तब्दीली को उजागर करने और भारत के तरक्की के सफर में लोगों की सरगर्म शिरकत की हौसला अफजाई के लिए एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस माहाना प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म मुल्क भर के ऐसे लोगों के मुतासिर कुन कहानियाँ

0: आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब समाप्त करते हैं प्रोग्राम मेरी पसंद। पहली पेशकश पत्थर के सनम फिल्म से है, आवाज है मुकेश की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। इसके साथ ही ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में हरियाणवी लोकगीत।

गलिया कौल करार मन मेरे दूर बैठ जो बात करे तू फिर होवे एतवार मन बैठन की मन फुर्सत को ना जाना से ही

कांटा वो कांटा ना यू कांटा मेरे कांटा लग गया ही कलेजे करक लगे।

अभी आप सुन रहे थे सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में हरियाणवी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में। सबसे पहला नगमा है साथिया फिल्म का, आवाज है सोनू निगम की।
1: साथिया मधम मधम तेरी गीली हसी,

0: इंडस्ट्रीज ला ngatri anu dare government is slogan jitang syo made in india jare ya startup india jare chan de las khani min langa chu faida cha chiyo des ko las ba tam ve sain sab samle ju
1: wa alaikum inayat sab anga yan ti pura akashwani team do neri shukr ada bet ki aapne mujhe yahan bulaya to jem me barang anga ti mima sa tang me mokik tang sis ke liye main aap sabka bahut bahut shukriya sir
0: छाना शिविर साहब नलना जेमिस ऑनलाइन प्रोसेस पो बायर ना सैलरी सिस्टम पो गचुक चेरुल बजो
1: बिल्कुल ता दे सिस्टम इससे पहले नए साहब ये मोज दे कि 2016 जेम आया लेकिन गति लद्दाख यंग 2019 सिर्फ अपना जगह ता यूटिल ता ने रिया अपना जेम हो आपका पीएफएमएस हो जितने भी डिजिटल गति प्लेटफॉर्म हो दोन सब यूटीओ से रिया अपना इम्प्लीमेंट हो तो उसके आने की वजह से बहुत स्मूथ गता सो सीन क्योंकि सब ऑनलाइन सो सीन पहले ये सिस्टम नहीं था सप्लायर यहाँ जे छात भी नहीं ये किसी को पता नहीं चलता था लेकिन जब से जेम आया है ट्रांसपेरेंसी पेमेंट टाइमिंग का बायर सेलर का हर कोई अपडेट सो सका था थोप सीन इसमें सिस्टम जी दियो चीन इनायत साहब कि जेम जेम यंग नीज हो चीन जिसकी ओचिन बायर जिसकी ओचिन सेलर बायर पो इन गवर्नमेंट सेलर पिन अति एंटरप्रेनर सब कोई भी हो सकता है इसमें या चाहे कंप्यूटर हो स्टेशनरी हो इवन अति लोकल प्रोडक्ट से वो भी ऐड कर सकता है तो स्नाची उत्पिन अतः साल भर उस पर पिन जेम में फलान लाजर फिस्तान लाजर लेकिन जेम उत्पन्न सीधा यार अच्छा जो गवर्नमेंट में वहां प्रोडक्ट दिख जाता है अच्छा सीधा प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना है
0: ऑनलाइन
1: अलग अलग सिस्टम इनायत साहब गवर्नमेंट इस चोस सपोज 50,000 तक माना डायरेक्ट वेंडर के नख्यू मैं
0: अच्छा ऑफिसर को
1: माना डायरेक्ट ओ डिपार्टमेंट इस ऑफिसर मीन कंपीटेंट अथॉरिटीज डायरेक्ट माना बायर के ना 50,000 सुपर क्यों मैं स्ना 25 उत्पिन दे यहाँ बड़ा सो 50 उत्पिन सर 50 ही कहना 10 लाख सुपा जैसे स्ना अति सिस्टम उत्पिन कोटेशन जरे L1 चोचा दे यहाँ खुरी कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम का 10 लाख सुपा डायरेक्ट परचेज बा या बिटा तक मैं मगर 10 लाख ना एल थी बिट तक माना जरूरी अगर आपका गवर्नमेंट 10 लाख से गिनना क्यों चीन ना जरूरी बीट तक चाह मगर 10 लाख से बीटा तक मैं चीन डायरेक्ट क्यों मैं
0: शरीर साहब जेमी मेन फ्यूचर पर चीन जो
1: ट्रांसपेरेंसी
0: बिल्कुल गवर्नमेंट क्लेम मेन ये पर दिया नुक ngatang price na product anu gachuga buyer na seller si interaction po ya traditional procurement system pe kana gachu bhara gajo
1: tab dekho sir traditional isme sab aapko online hai live hai dhyan yon du chok shon chamen ki ye aur isme system human intervention kuch nahi hai ye samjhen chuk ngate mi rate jo bhi aayega wo system khud dega suppose yare dikna jo buyer id face फिर आपको कैटेगरी ओचिन सर या सपोज या काटरेश पहुंची ना काटरेश कैटेगरी का चाचा जुग बस्तान एक ओचिन 10 लाख 5 लाख 5 लाख देख ना यारी अप्रूवल और रीजनेबिलिटी ऐसा भी कही यार क्लिक बाना वो किस को जाता है हमको पता नहीं चलता है वो सीधा ऑनलाइन खास हो सोचिन सर
0: अच्छा
1: ओ बाकी
0: ये ना पता है जमीन सुक
1: ना पता है जमीन सेलर पर
0: सेलर पर
1: पता
0: है कहाँ से दो लोग पता है
1: कहाँ चमीन सर तू ध्यान यार आज इस कहाँ चाना ना ना माना सीधा सिस्टम सोंदे
0: अच्छा टेंडर पर मेन सुपर
1: टेंडर में ने तो माना अति सिस्टम सोचो दे वहाँ L1 रेट आएगा सु सबसे लवेस्ट आंग ना दो लोग टेंडर से जी
0: सिस्टम
1: दो सिस्टम आम सो भाई वो तो बीट जाएगा जैसे यार बीट चितांस तंग माना देखा ना ध्यान यार पता है जिन पहला रेट पर दू तंग दूसरा L1 आपको आ जाएगा तो L1 को सिप्ला साहब नजर बाकी चीज जो डायरेक्ट परचेज करने में डायरेक्ट परचेजिंग आती जैसे जो ही आया पोर्टल पर है ना दें कैटेगरी भी चीन सर कैटेगरियां यार सपोज आती शोशोक चिंग चीन या स्टेशनरी न्यू चीन पेन चिंग चीन कुछ भी हो उधर कैटेगरियां सोचे क्लिक बाचिन क्लिक बाना करगी ना सुसुदुरी होना उधर शोश है चीन शोश आना खोज खा गांव रीजनेबल गांव खोरे मतलब स्पेसिफिकेशन होंगे देखा क्लिक बस तंग मना दिया ऑर्डर है चीन सर
0: शेवन साहब ता यार 2019 लद्दाख दा नरियाब ना आते जेम शुरू गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट ने चैलेंज शियो पिंजो जेम बचस ना
1: चैलेंज ना माना ट्रांसपेरेंसी चैलेंज ज्यादा था सर दे माना मतलब आप मिसुमी करना कोटेशन क्यों से उसमें मतलब
0: ज्यादा इल्जाम था
1: बिल्कुल इल्जाम भी आता था और क्वेश्चनेबल चेंज हो चुका है कि भाई ये एक एक सप्लायर बार बार आता है छूता इसमें हमारा जो बायर है उसके उसमें हाथ में ही नहीं है ऑनलाइन छाना और सबसे बढ़िया ये है स्ना सीधिया यार आरडीटी में पिन इसमें आपका जो जेम का जो ये इनवाइस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पता चल जाता है जैसे सपोज यार बायर इन बायर क्यों

0: पर एक डीडीओ आयो डीडीओ बस गेन ला प्राइमरी यूजर पर डायरेक्टर हो यार इस बायर इज दीन आर्डर चितांस ऑनलाइन सपोज यार एक प्राइमरी यूजर डायरेक्टर पर एसएमएस चेचिन कि आपके बायर ने ये प्रोडक्ट खरीदा पहले वो पता चलता नहीं था डायरेक्टर को यो आई आर एच में अभी डायरेक्टर को वहां पता चल जाता है कि भाई ये इस बायर ने आज ये प्रोडक्ट खरीदा तो उसको फोन कर सकते भाई तूने क्या खरीदा
1: क्यों खरीदा,
0: क्यों खरीदा? अगर पता मचाना ना अकाउंटेबल सो दे तूने किस से पूछ के खरीदा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो ओदो सो सर अकाउंटेबिलिटी माना बढ़िया सो सिन जब से जेम आए
1: तना जेम ये रजिस्टर्ड बिजनेस हांग अति
0: तो ओदो फंगा जे दे सर तंगा जे दे अभी जैसे सपोज अति अति जितने अति एंटरप्रेन्योर लोकली प्रोडक्ट जो दे दोन ला पता मिंदु उनको जेम पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है जैसे अति लोकल शॉल चोखन ची होत लोकल उन सबको जेम पे रजिस्टर करना चाहिए खुरी प्रोडक्ट कैटेगरी एक अत्तंग से खोरे रजिस्टर बार कुछ ताकि गवर्नमेंट लाज के इजीली थे जब भी दिल्ली विल्ली मेला वेला चेचना अति प्रोडक्ट इंस्टॉल कर घोसपत अब उनको जेमी के युद्ध में इतना खो मजबूर हो जाता है युद्ध ना कर तो सीधा मना और ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट वो दीका का तो एड बना सिर्फ लद्दाख साजिन ओवरऑल इंडिया कहीं भी मन सगा चोचिन मतलब बेंगलोर का भी करगिल से जा सकता है बेंगलोरी वेंडर चिंगता हूँ मैं चाहिए बिल्कुल
1: एमएसएमई स्टार्टअप उन गवर्नमेंट
0: सपोर्ट बिल्कुल एमएसएमई सबसे फायदा दी हो सर जेम यंग एमएसएमई का नाम आते जैसे टेंडर बजते सर एक तो उनसे टेंडर फी नहीं लेना है शुद्ध सर दोनों आचे सीडीआर एफडीआर दोनों बिल्कुल एमएसएमई एग्जेम्प्टेड
1: अच्छा
0: और एमएसएमई अगर कुछ रिजर्वेशन जैसे कुछ सपोज यार टेंडर फीस टेंडर भी है ना अच्छा ऑप्शन भी मत एमएसएमई एग्जाम तंगी नस तंग मना कुछ ऑटोमेटिक जैसे ऑर्डर चाहिए दे एक करोटी बैंक का तो एग्जाम बना कुछ करोड़ ऑटोमेटिक खो अच्छा चीन मना और एमएसएमई हमेशा वो उनके बगैर वहां खुआ पार्टिसिपेट बच पर कुछ दोनों यंग सर्कुलर चीज से सर दे रिसेंटली एमएसएमई पेंडिंग पेमेंट
1: अच्छा
0: बिल्कुल जब पेंचमेंट एमएसएमई के लिए स्पेशल है मना कोई दी ऑर्डर था हसके ना पेमेंट बार कुछ
1: कुर्सी इलाज
0: बिल्कुल
1: फर्नीचर है
0: बिल्कुल
1: फर्नीचर गला कंपनी ने आयो गति दी का सुनसे सुमा स्केल इंडस्ट्री शिका तो फिर खुश हाँ फर्नीचर
0: रजिस्टर बार
1: हाँ ताना उदोन रजिस्टर बार ना प्रियोरिटी थोप ची ना हाँ
0: प्रियोरिटी एमएसएमई थोप दे
1: एमएसएमई
0: थोप ची प्रियोरिटी मतलब जब आप जेमी का रजिस्टर बस उतना माना मजबूर दे प्रोडक्ट अगर लोकल न्यूयॉर्क दे क्या दे माना खो जेमी का रजिस्टर क्यों मैं दे फिलहाल तो खोर रजिस्टर ना बार घुस और एक जेमी का यहाँ सोयल अच्छी हो दो पता मिंदू दे जेम लोन भी देता है सपोज यार प्रोडक्ट रजिस्टर बस यार ऑर्डर सो जेमी कहना यार ऑर्डर थो गवर्नमेंट ही कहना ता यार अपने में सपोज 5 लाख जेम अदिया ऑर्डर होता से खो कहना रिक्वेस्ट बना खो लोन आता हूँ जेमी थ्रू ऑनलाइन
1: फैसिलिटीज है सर का जिम का जो प्रोक्योरमेंट 20 लाख बजे था जो 3.7 करोड़ अगर का तो ऑर्डर चेक अगस्त 2026 था इंसुक 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बस इंसुक दी जेम थ्रो छा पोटेंशियल प्रॉफिट होते 2019 शुरू
0: समय
1: ये जेम योंग सर गैप पुना गति दियंग बखाने बिजनेस बखाने मीमांग सुनला फायदे की छात्र
0: फायदा देता हूँ आज दे फेज दे जेम मायों चना आपको जब तक यार रजिस्टर सप्लायर इन मैंने मैंने डिपार्टमेंट ला पता है जमीन जेम मेत चना
1: बख्शीश
0: जैसे यार इस माल सच या बात या मगर गवर्नमेंट ना बुखोटा चाप मेत मना गवर्नमेंट को पता ही नहीं दियंग और किसी का मोनोपोली नहीं है सपोज यार सपोज जेमी कची हो चना हर कोई अपना आईडी खोल सकता है ना दुख से चंग परेशानी में बाहर का आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास जीएसटीएन होना चाहिए दिया का यार ना दुख से जेमी आईडी फैन जी छाना जेमी आईडी फैन फल्ला यार रजिस्टर सो कोई मोनोपोली नहीं हुआ पहले ची होती जेम में चना आता मी चाले हर उस वक्त छाना मी ची चिकित्सा मैंने तो हर बार उसको सप्लाई जाता था अभी वो जरूरी नहीं है अभी ट्रांसपेरेंसी है कोई भी जा सकते सपोज देंगे ऑप्शन सिस्टम जेमी का ऑप्शन सिस्टम लाइव होता लाइव दो बजे ना अति वो सिस्टम होता नहीं था अभी लाइव सिस्टम है सपोज देंगे टूल टूल पोस्ट पे हो या बताएंगे अति रेस्टोरेंट दो गांव घूमते एमसी हटी गांव जेमी के तंग
1: ऑनलाइन
0: ऑनलाइन ऑनलाइन जेमी के तंग मना उसमें क्या हो गया लाइव आ गया लाइव जमा सपोज एनएच साहब ना बायर पर पता चल सुस बोली तंग ना एन ला पता है सुस बोली
1: रेट बड़े
0: जिस दिन एरे कांस दे ऑप्शन ला तना एक बायर ला मींग पोथों जमीन यारी सुस

0: बोली ता नो जरे नंबर वन नंबर टू जब तक फाइनल छचाओ छाने नंबर वन पुस्तक मने ये सपोज बोली तांस 10,000 इन ऑटोमेटिक देना है चिन भाई चिंती बोली यहाँ 10,000 तांस नंबर वन इस मी हो जब नंबर वन इस
1: नंबर टू
0: देखना देखना ये यहाँ यहाँ एसएमएस जो मने ये ची बार वो बड़े ही बार ना चैनल लाइव आ गया ना
1: सम सुपच है कैपेसिटी ने सुपच है
0: छाए जाए यान बिल्कुल मतलब ये नहीं कि ना दुख से वो नहीं मन मैं स्नाची हो पिन जाके एक अच्छा जा देख रहे हम बोली तां से वो सिस्टम है नहीं अब कहीं भी दिल्ली में हो वो आए खोला दिन सुअल तचा वो दिन बड़ा ही बस उसमें अपना बढ़ाऊंगा आराम बस दुख चा देख रहे हम एसएमएस सोच नहीं रहा आपसे ज्यादा और एक बंदे ने लगा दिया देख रहे यहाँ एरिस गेंद लखेर मत छाना आप जरूरी नहीं है एक ऑप्शन ही यहाँ सपोज दिल्ली अल्लाह शोध न दिया दुख से मायन दे ना वो सिस्टम था कि यहाँ दुई ऑप्शन गारा छा मायन देगा दुख अभी आप दिल्ली में हो बाहर इवन आउटसाइड इंडिया भी हो तो अपना ऑप्शन
1: बेनिफिट था बच्चे जो दरे फॉर एग्जांपल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हर कोई करता है यूनिट है कि नहीं पता नहीं है
0: तादो दियो सिस्टम होते सर तांगा ये चीज दे गति गलत एमएसएमई बस है ना उद्यम का रजिस्टर वारुशी उद्यम जेंची की एक पोर्टल है गवर्नमेंट बता ओदे अंग खोस खुरी मैन्युफैक्चर वे प्रोडक्ट पु वारुशी सपोज खोस फर्नीचर इचवाना सप्लाई ऑफ फर्नीचर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी ची योजना दो उद्यम राष्ट्र बस दाओ एक उम्र पिन तांग अते हस के टेंडर फिन सन रचिन भाई दू मैन्युफैक्चरर उम्र कोशी छान मैन्युफैक्चर हूं मना उद्यम सर्टिफिकेट उपना एक अरबी सोचिन छान हम उसको एक्सेप्ट करेगा मगर खची ची बे दुमार राष्ट्र मबा देचो योद जने दो मायन दे फिर कोई प्रूफ तो होना चाहिए
1: उद्यम रजिस्ट्रेशन पर बस नंग
0: बस
1: ग्राउंड का माने मैच धरी फॉर एग्जांपल
0: दो गलत छोंदे इलीगल
1: दो लाख चेकिंग ची छाता
0: दो ना वही तो देखो का इंडस्ट्रीज ला सपोज गाचे टेंडर फिंग्स जेमी का टेंडर फिंग गाचे जरचिन उद्यम हो मतलब एमएसएमई होना चाहिए और उद्यम रजिस्टर होना चाहिए खोज देसो उद्यम रजिस्टर पर छो मैं दे वो पोर्टल पे होता है ना देसो सुस्ता जिनको इंडस्ट्रीज पर सता से मैंने खोज ता चाहे
1: पूरा वेरिफिकेशन बस
0: में ता चाहे मैं दे मैन्युफैक्चरिंग दो मेन मांग अच्छा बरगा अगर का तो हमको लगता है
1: शक होता है
0: शक होता है इंडस्ट्रीज ने चिट्ठी भी ड्यूस एमएसएमई दी मैन्युफैक्चर इन आज मेरा कौन सर्टिफिकेट ता चाहे दे इन या
1: अल्टीमेट अथॉरिटी ने इंडस्ट्रीज सो बिल्कुल शेमी साहब ता दिया नु जेम गते गवर्नमेंट हिसाब के तंग लदाख यंग डिस्कस बाज जो यंग से जी यारा अटित पजु की मतलब आर्टिजन ने सुनसे सुनसे गति चेपो लाखा ने गति
0: गति मतलब गाज यहां स्प्रेक देते सर हमको अभी प्रॉब्लम हो रहा है सर्विस में सर्विस है माना गति जेमी का सो बिंदु जैसे सर्विस मींस रेस्टोरेंट पा जान तंखन आपका इवेंट मैनेजमेंट बखन आपका लोकल जैसे गति आर्टिस्ट वर्टिस्ट उन सबको रजिस्टर करना चाहिए सपोज दे आकाशवाणी इन या सुन दे गवर्नमेंट फंक्शन आर्टिस्ट अब हम जेम पे देखता कोई है ही नहीं युद्ध ना जाए सीधा खो सर्विस देने आता हूँ खो डायरेक्ट हायर बस है दे क्यों परेशानी नहीं होगी देखो सारा रजिस्टर बार
1: गा सर्विस गवर्नमेंट लर्गोस दा दो रजिस्टर एनजीओ की ना खो संभा ना
0: इवन अति लोकल थैला वेला चो दे सर जैसे मतलब चौमिन दो जेमी का मेत पना हमको मजबूर होता है बाहर से खरीदने के दोन का तो योजना डायरेक्ट सो दे डायरेक्ट परचेस हो जाएगा रुपया
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप
0: उनको मसला ये पैन कार्ड और वो होना चाहिए जीएसटीएन देख करके हम वो रजिस्टर कर सकता है देख के हम खो रिक्वेस्ट बची खो प्रोडक्ट होता कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी में इतना जेम पर रिक्वेस्ट बार रोशन चौन ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये मेरा प्रोडक्ट है काइंडली रजिस्टर दी प्रोडक्ट फॉर कैटेगरी चूसता हूँ जेमा चिट्ठी था माना खुद चूसता हूँ
1: तना दियो सुन दे जो खची खची से दे जीएसटी फॉर एग्जांपल लास्ट पर कम छोत जीएसटी कहां दो जीएसटी चुआन जीएसटी एन चुआना जीएसटी

0: Or nil return bas kaans kaans hai bas.
1: Skang man roshin.
0: Skang man mandatory hindi. Nil kaans bharna hai. Usme kya hai?
1: So bilkul.
0: Na koi ka pehne pahuncha main apna portal se register karna hai.
1: Bilkul.
0: Fees hai na nil kaans na aage tang man chaf hogni maaf hogde.
1: Bilkul jo ta future hisab ka sam batana jo akhri ka tanga tang waqt pa dukh se jo chana gachu sir jo digital procurement digital jemi system post procurement dona sunche business sa participation po gatu eran sa duni future po gatu chi yo future anok dona dius procurement system po easy gatu abe ya book ya age yang farda dian ko tarqi yo nok de sambek ya de eran chang future vision chi thon abe
0: de la jemi kana eran aziz de pe jemi ka har saal update chin dushin usi cheezon ko jem pe matlab sna umat pin nayat sab yara manaya unbranded products re मैं किसी को भी ऐड करके दे देता था दे दो खुले जेमी बंद बसी शायद चार पांच दिन ने फला अनब्रांडेड जरे मन आया जेमी का युवा अब राय मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी मीन तंग से प्रोडक्ट तंग से मैंने ये जमे दूसरा सिस्टम
1: अच्छा, ब्रांड पुचोर
0: ब्रांड पुचोर से दे सिस्टम में सर इनायत सब ओएम जरे ओएम जब सबसे बात यारा गोदरेज यारा जब तक गोदरेज यारा ओएम तंग से मैंने खोए प्रोडक्ट को यहाँ जेमी का अपलोड बाइन जमे सपोज जेनविन सपोज यार डिपार्टमेंट चीज भाई हमको गोदरेज या मतलब स्टेशनरी या एसी हॉट एंड कोल्ड एसी एलजी हॉट एंड कोल्ड कोसी खोजता हूँ तो अब आप क्या है आप बायर है ये समझ दूंगा दैट्स व्हाट आई एम एंजेमेंट आपको जे एलजी पंगा जबर उशन भाई ना जेमी का रजिस्टर हो ना चार दिन फिर ओएम तो हूँ एलजी फिर वो आपको क्या देगा ओएम देगा नहीं देगा ना यार प्रोडक्ट को यार बायर पर एड बाइनचिन देर गया अपना जो सेलर ला प्रोडक्ट को एड बाइनचिन देखना बाहर लदो थोचिन वैसे तो मन दसो तंग मैं
1: अच्छा दिखेगा ही नहीं
0: दिखेगा ही नहीं कारगिल में वो प्रोडक्ट किसी को जिसका जनवन है उसी को ही दिखे
1: चाहना चिरू ना फायदा सुना अगर प्रोडक्शन में
0: चीज मतलब जनवन प्रोडक्ट ले और जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा
1: मैं जो है चीची गाते फॉर एग्जाम्पल फ्रिज ऐसी चीची कुर्सी कुर्सी गाती जी चीज का तो चुआ ब्रांडिंग बसेगा
0: लेते हमको वो मेन वही जरूरत होता है ना अति लोकल एरिया इजी चेंदु क्यों अब बाहर से कहीं आता है खुआ हसके प्रोडक्ट पर जोक्स ता मुश्किल चेंदु खुआ टीएल जो सर्विस ला मुझे हसकी चीज छक में क्यों माँ मैं देख अचस दे माना टेंडर भी ना मैक्सिमम बरगा खचिया लोकल ही सर्विस स्टेशन दी कहूँ जरूरी इंजर था मैं नची चेंदु विनायत साहब कि लोकल का तो मैं ना दे निजी तंगा था कर बॉम्बे ने दिल्ली फोन बंद तो वो सब है सर जेमी बहुत चीजें हो जेमी का गाती आपका आजकल सर्विस जेमी गाती आउटसोर्स गाती एम्प्लॉयज दोनों गांव जेमी के चेंज इवन गाती ऑक्शन उनका जरा दे गाती चम से ऑक्शन चेंज होना वो सब आजकल जेम पे चल रहा है दोनों गांव में रेवेन्यू सरकार ना हो चिंदे जितने जीएसटी उस पर लगता है चम से जेमी का छाना तीन गांव में जीएसटी सरकार ना होंगे दिस जीएसटी फायदा यंग आता गवर्नमेंट ना लोग सुनते हर चीज का फायदा है ये सरकार लांग सेलर लांग बायर लांग सेलर ला पूरी सामान पर गुट बायर ला पूरी टाइमिंग का प्रोडक्ट पुरथों से टाइमिंग पेमेंट बोस और इसमें पेमेंट सिस्टम बहुत जरूरी है ऑनलाइन है दिन यारी एकदम पता है जिन ये प्रोडक्ट को दी बिल चाहता हूँ और अगर हफ्ते नहीं बना यार सेलर इस बायर का आप इंसिडेंट रेस कर सकता है इंसिडेंट का तो रेस बेच दे सपोज सेलर यारी सामान था उस पे मन मन मानता दो साल सो तीन साल
1: अफसर
0: गख से अफसर इस गख या चीमेत पर यार इस उदय डिपाने में इंसिडेंट रेस बरूशन भाई इंगाज दी सप्लाई आर्डर यार आयो जेमी का ऑनलाइन हो मसा परचेज आर्डर हूं यार कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो दिया जे मता से भाई मैंने इतने महीना हो गया इंगाज सप्लाई बस दी डिपार्टमेंट पुज नी पेने मता इंसिडेंट रेस करना है इंसिडेंट रेस बना डिपार्टमेंट पे जेम पो तीन चार दिन लगा क्वेश्चन था भाई तूने क्यों नहीं किया खुद जचिंगा हफ्ता आता डिपार्टमेंट हफ्ता आता ना ठीक है हफ्ता मतांस दे खोज जची भाई कल से तुम कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता है तने जेम डिपार्टमेंट जेम पो ऑटोमेटिक बन छे हफ्ते के अपना चंग बाय जेम खो जब तक यारी पेने ख्याल देना बस मैंने दैट्स व्हाट डिपार्टमेंट ना ए होइन डिपार्टमेंट इज सेलर के खिलाफ का तो बना यहां यहां दिन फला यहां प्रोडक्ट लेन मन है चमेने से छापो पेन चिता जा दैनिक बस डिपार्टमेंट इज माता डिपार्टमेंट यारी खिलाफ इंसिडेंट रेस बस रेस बना यार ऑटोमेटिक यंग एन सही यहाँ बिजनेस बामा ने जब तक इंसिडेंट आप खत्म नहीं करें छाना बहुत ट्रांसपेरेंसी और बहुत सहूलत है सर
1: बख्शी सलीम साहब गवर्नमेंट दी दमो स्कीम पो गाँव गति मीमांग सुन ला फन के तंग दी स्कीम स्कोर ला यार गति मीमांग सुन ला हगो तंग याला बसे खास कर गति नौजवान नस्ल ला गति आर्टिजन ला गति

Nakhsan sakpan yante Haji Mahmud Hussain Babi ka narsak masut khegne ne nitpin medium wika dio akashwani kargilin. Medium wipar ya akashwani kargil kya awaz hai? Samin ab se lekar raat ke 10 baje tak aap hamare nashriyat medium wave 1584 kilohertz, medium wave 684 kilohertz, FM sawa share 1 megahertz aur mobile app NewZone AIR par bhi aap hame sun sakte hain. हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. मीडियम वेव तोचिगना गबगेना निशुज विनेश बी किलो हर्स, मीडियम वेव टुगेना निशुज विनेश बी किलो हर्स, एफएम के आशारे चिक मेगा हर्स या मोबाइल एप्स न्यूज ऑन ए आई आर का गचस आकाशवाणी करगिली का नजर न्यूज दिलिंगी जापो शिंशेर अक्टूबर जे सुम Dining for Chukwat P. Program and Kure, Natayanti Dunung Lipset, Natijuna, Salampo, Prudmujan, Sonshik. Sahmasansanla, Duaya Program, Sadakal Lagozubit, D. Programme, Rakseka, Yan Mazar, Sahmakurani, Tilavadna, Tarjuma, Sheikh Qari Shakir Qasimi.

ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनब्बे नहीं किया गया था मुतनब्बे कर दो, वो गफलत में पड़े हुए हैं।

और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते।

और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो उनके निशान पीछे रह गए, हम उनको कलम बंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौह महफूज में लिख रखा है।

वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो, और अल्लाह ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो।

0: कहता है कि मुझे डायबिटीज हो गया है, मैं लेवल 1 का हूँ, लेवल 2 का हूँ, तो ये डायबिटीज क्या है, कैसे होती है ये?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जो समय के अनुकूल है।
0: जी
1: पूरे विश्व में, भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या नंबर 2 पर है। चीन में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी हैं,
0: जी,
1: उसके बाद भारत का नंबर आता है और आश्चर्यजनक रूप से तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है,
0: जी,
1: छोटी जनसंख्या होने के बाद भी, और चौथे नंबर पर अमेरिका है, और फिर ब्राजील का नंबर आता है, यूएई का नंबर आता है।
0: जी जी,
1: तो मधुमेह या डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरे विश्व में, और जो साउथ एशिया के देश हैं और अफ्रीका के देश हैं, इनमें ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। देखिए, दो तरह की डायबिटीज मुख्यतः होती है, टाइप 1 और टाइप 2।
0: जी जी,
1: टाइप 2 डायबिटीज है, उसके बढ़ने के कारण जो मुख्य रूप से सामने आए हैं वो 5-6 कारण है। पहला कारण है कि भोजन में बदलाव,
0: जी,
1: धीरे धीरे 50-60 सालों में हमारे भोजन में बदलाव हुआ। दूसरा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी, आजकल लोग सारा काम श्रम से नहीं करना चाहते, हर एक के लिए संयंत्र उपलब्ध है, तमाम तरह की गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है, सब कुछ है।
0: जी जी,
1: और लोग पैदल चलना भूल चुके हैं और अपने दिन नित्य के कार्यों में भी श्रम करना भूल चुके हैं, किसान भी खेती करते नहीं है, करवाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली जा रही है। तीसरा कारण है तनाव की अधिकता। पहले तनाव बड़े लोगों को होता था, अब तनाव नर्सरी केजी के बच्चों तक उतर गया है। इसके जिम्मेदार हम हैं, हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि क्लास में प्रथम आए, ये जाने बगैर पूरे क्लास में पूरा क्लास कैसे प्रथम आ सकता है?
0: जी जी जी,
1: कोई एक तो द्वितीय तृतीय आएगा।
0: हाँ,
1: तो हमने तनाव को बढ़ा प्रतिस्पर्धा के रूप में लेकर के बढ़ा दिया है।
0: जी,
1: चौथा कारण है, क्योंकि कहा जाता है कि जो परिवर्तन हुए हमारे वातावरण में, उससे पॉल्यूशन बढ़ा,
0: जी,
1: और पॉल्यूशन से भी डायबिटीज का रिश्ता निकल कर आया है। पांचवा कारण है कि अनिद्रा।
0: जी,
1: हमारा देश पिछले 30-40 वर्षों से सोया नहीं है, अनायास रात्रि जागरण हो रहा है।
0: जी जी,
1: रात में जो ड्यूटी करते हैं उनका जगना स्वाभाविक है, परंतु जो ड्यूटी नहीं करते हैं वो केवल व्हाट्सएप पढ़ने के लिए रात में जग रहे हैं,
0: जी जी,
1: या केवल अपने मैटर डालने के लिए रात भर जग रहे हैं, मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हुए रात जग रहे हैं,
0: जी,
1: और उससे जो ब्लू लाइट पड़ रही है वो हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील कर देती है।
0: जी जी,
1: ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण उभर कर आया है। कुछ कारण मैंने बताया आपको,
0: जी जी जी,
1: लेकिन इन सब कारणों के ऊपर सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक।
0: जेनेटिकली
1: हमारे भारतीय लोग प्रीडिस्पोज थे डायबिटीज के लिए।
0: जी जी,
1: जब उनको वातावरण अनुकूल मिला तो डायबिटीज हो
0: गई,
1: इसलिए तेजी से बढ़ रही है। और एक और कारण है कि अब जांच हो रही है।
0: हाँ, जी जी जी,
1: पहले
0: जी,
1: हो सकता रहा हो,
0: जी,
1: पता ही नहीं
0: रहा, नहीं रहा, रहा था।
1: तो जांचों में लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, लोगों में इसके लिए जागरूकता बढ़ी, लोग जांच कराने लगे और डॉक्टर भी जांच करने लगे।
0: डॉक्टर साहब, इसके क्या लक्षण दिखने लगे, मूलभूत लक्षण वो कौन से दिखने लगे कि जब हम ये समझ लें कि शायद हम डायबिटिक हो रहे हैं या हो गए हैं?
1: देखिए, सबसे जरूरी बात ये जानना है कि मधुमेह के वैसे तो कोई लक्षण नहीं,
0: जी,
1: परंतु लक्षण बहुत देर में आते हैं। प्रारंभिक लक्षण जो है, अगर किसी का अनायास वजन बढ़ने लगे,
0: जी जी,
1: और या घटने लगे तो मधुमेह हो सकता
0: है।
1: अगर किसी खासकर जननांगों में इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए,
0: जी जी,
1: तो निश्चित रूप से एक बार शुगर की जांच आवश्यक हो जाए। बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आवश्यक हो जाती है। और लक्षणों में कमजोरी का लगना, जल्दी थक जाना, तनाव में रहना और बात बात पर बिफर जाना, इस प्रकार के लक्षण भी डायबिटीज में देखने को मिले।
0: जी जी जी, तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर साहब को सुना ही। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: नक्सन सफाई तेर दिलुक सिहा को एक ना विनत पी मीडिया में का जो आकाशवाणी करगिल ने वास पत्र सोतगाने में समझो सोगा संसोक कजाता जांस करे गजल सिंह एंड मजा निमाना फपानी करना।

Bueno.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक

0: प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gaur Palak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Details from our correspondent.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah announced 101 crore rupees for cow shelters at the Sammelan, attended by around 35,000 Gopalaks from 11 districts. He also virtually performed the foundation stone ceremony for a dairy plant to be built in Ujjain at a cost of 255 crore rupees. He said that a central laboratory has been set up in Bhopal at a cost of 12 crore rupees and a mini dairy plant will be built in Shivpuri. Before the Gopalak Sammelan, the Union Minister also inaugurated an exhibition by the Madhya Pradesh Police on the new criminal laws at the Bhel Dashara Maidan. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh, from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Home Minister Amit Shah said agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Mr. Shah added that from 2019 till August this year, a total of 288 fugitives from 36 countries have been brought back to India. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi,

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नो इक्वालिटी मछाइन बराबर मछाइन जो या चीज चीज गता गता नजर ना द अनटचेबिलिटी गता उजु ऑफेंस इन यारा गता दिनो आर्टिकल गता सेक्शन देन कतो एक्ट कतो एक चीज जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो या 1955 नु गता दिजोस एक्ट चीज खम सु गा सु चीज अनटचेबिलिटी ऑफेंस सिख बना ओदे हिसाब क ओदे एक्ट पे तहत को पनिशमेंट को सजा ता चेन गा सु चीज दिजोस बना फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर गा ऑफिस मिसाल गा जरा फॉर एग्जांपल जदा चिचिक मन ऑफिसर चो चिचिक मिसाल लज बखन चित कुल्ली गत गा ऑफिसर जिन को कुल्ली जरे गाता मलसा जिगा कोने मुंगा जन ज जमीन जरे ने दिया कुरान टचेबिलिटी मिसाल के तौर पर को गाऊ ना न शहर नाइन नस कोने मु दुख जमीन जर चस वो अनटचेबिलिटी या मिसाल गा तियों चैन को मना खूं मिसाल गाते फॉर एग्जांपल खूं नंग पो गरीब चोत नची नंग पो अमीर चीन खूं फलाना पैन फिस्ताना पैन गाचे दी ता कोम पुने इंजर चप्पे हिसाबी का खूं फलाना पैन खूं दे जना फलाना ता पुन देन युत पिन या हो सकता खूं मुस्लिम इन गा हिंदू इन उदु जो रिलीजन बेसिका या अमीर गरीब बेसिका उदुन गंगमा चीन जो कानूनी नजर या नुकदून ला अगर गा सुच डिस्क्रिमिनेशन का तो बना फेशियस का तो बना जो कानूनी नजर ऑफेंस इन जुर्म इन जो गाता जो आर्टिकल 17 या नुक हिंदुस्तानी आईनी आर्टिकल 17 नो क्लियर जर नो अनटचेबिलिटी को ऑफेंस इन जो गाता दी आर्टिकल बु चुचा चे चो सिन सक बराबर सक इक्वल चाहे को गचुप तप के न गचुप मी इन चाहे अमीर इन चाहे गरीब इन चाहे शहरी चाहे गांव पे सक बराबर जक पे मी ना दी आर्टिकल पु गाता क्यों मसा सिन जो ताकि अनटचेबिलिटी खत्म छो दी प्रैक्टिस पु दक्षा माना हिंदुस्तानी शहरियां गता मैक्सिमम डूल बथों चैन जो मिसाल दलित नंबो यंग तबका नंबो खुम फलाना दलित इन खुआ दी मिसाल के तौर पर राइट्स पे मिथोबर गोशाइन दी हुकूक को खुआ मिथोबर गोशाइन या खुम फलाना तबका दी राइट्स पे खुआ मियो उमर गोशाइन मिसाल राइट टू वोट या चीज खची खुआ मिथोबर गोशाइन जर चेस नामा दू कानूनन जुर्म दू गता दू नामा अनटचेबिलिटीज चैन मैं खमे दे छपो ले सिगा मैं मिसाल गाती गाऊंगा को गाँव पे न शहरी जरचासी दी चीज सुनी का अगर इक्वल को माता छाना मिसाल के तौर पर को शहर पहन जरे को ख्यारिक को शहरी को गाँव पहन जरे को कम रे छाना चीछे चिन दिया अनटचेबिलिटी जर चैन दिया गाता इक्वल मछाइन जो बख्शिश नस मिसाल फॉर एग्जाम्पल चितन यरा दी का गाता चिचिक निशिक अनटचेबिलिटी मिसाल चीज यरा जर ना गाता गचुक चीज जर ना मिसाल अन की गाता गा चिचिगिस चिचिगिस फॉर एग्जाम्पल गाता स्कूल सिका फ्रू सख स्कूल लचेत मिसाल के तौर पर खो खो नंग पो गरीब योद जरे अमीर फ्रूस खोने वो डिस्क्रिमिनेशन बना या मिसाल खो रंग पो नाकपेक दो कारपो योद जर चास पो ओदो चोक्स बना चिन जुन गा गाता अनटचेबिलिटी मिसाल के तौर पर सख जम्बो लंच तंग को गरीब इन खो नोजन चमेन जर चा उन गा चिंज बस स्कूल से आना मिसाल छचैन गता ऑफिस से आना दिला सुन छचैन उन गा अनटचेबिलिटी ने रहा फॉर एग्जाम्पल मास्टर जी का यंग यरा जरना जाती यंग अता मिसाल के तौर पर खुद ही छोस पुन ताल्लुक जख पद जरचा जख से खो मिसाल मस्जिद ने अमीन चुचा मंदिर अमीन चुचा दून गांव में यरा आवामी जगह ने अनु खो मिसाल मस्जिद जगह रिलीज है यो ना खुद दलित इन खो मुस्लिम इन खो उदु तो या खो गरीब तबका या खुद ही छोस पुना या खुद ही कौम पुना देनी जख पद ताल्लुक जख पद खो मायों चु जरचा सुन मिसाल के तौर पर आवामी जलसा से अनु मोह चुचा सुन गांव में चिंजू अगर मायों चुना ओदे नजरे का डिस्क्रिमिनेशन पे मायों चुना मिसाल के तौर पर ड्यू अनटचेबिलिटी मिसाल चीची का मांगमा हो सकता है ड्यू जोक्स नाता अनटचेबिलिटी में एग्जांपल का तो यार यहां चीज चीची आओ नाता ड्यू चीज मैक्सिमम थोचाइन कि जी म्यूज मसा जी का पेप चैन नाल चैन छुगियो को चीची गरीब में चीची छुतुंग सों या खुश छुतुंग सों जे को गैप पुना ओदे नाल पे कने छुमी थुंग चा अनटचेबिलिटी जाना ना चोक संगता मिसाल के तौर पर जगह चाहिए मलसा जी का गेट टुगेदर से जाने हम बोझ नहीं होता खुद ही टेबल पे दुख पिन खुद ही थाली का जोश पिन गाती थाली का जचमें दी कोरे तुम चमें जर्चास पिन गंगमा मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल गाते कोरे चूसर गया गाते तुम सर गया पुना खुचाव खरां चिक गया पुना खची दो चोक शोंचिन खुद ही कोरे तुम पिन गाती कोरे खुचर गया पुना दी कोरे तुम चमें जर्चास अनटचेबिलिटी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल यार गाता चिची कोरे तुम सर गया पुना खुश से माता ना को अमूमन इस तुम चमें लेकिन खची दो चोक शिक सोच शोंचिन की दी कोरे खुश तुम पिन गाज मारे खुश सर गया पुना गाती कोरे साबा खोने वो दुख मी दुख चा या खो गरीब तबका इन खो फलाना फिस्ताना छो ने वो ताल्लुक फलाना इन फिस्तान को दलील इन खोने वो मी दुख चाऊ ओदे जात नजरे अस्ताना दून गांव चिंजू गता पना हिंदुस्तान आर्टिकल 17 ऐसा

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: फंसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दसन सपा एंते प्रोग्राम गेन पेन सगेत पानीफिया मीडियम विका दिव आकाशवाणी करगिलिन वास्पोत सत उर्दन सोसो कसाता अचनमोनी प्रोग्राम चिंगन मजा प्रोग्राम फचखान पेन जहरा बानो मीर प्रोग्राम प्रोड्यूसर पेन गुलजार हुसैन।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ।
3: फर्जी ऑफर से होशियार,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: असन सपयंते अशनमोनी प्रोग्राम गेने ने पिन मीडियम में का दुआ काश पाने कर गिलिन वस्पतु सुदुन ने मेने जुसा का संसुक कसता पुर्गी खबरों लास ना बाजार।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए मैं महमूद अहमद खान।
1: जम्मू कश्मीर कानूनसाज असेंबली के स्पीकर और एमएलए चिरारी शरीफ अब्दुलरहीम राथर ने आज बड़गाम जिला इंतजामिया के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके बुलंद पाया वली कामिल शेखुल आलम हजरत शेख नूरदीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। एमएलए मौसूफ ने तमाम महकमों को जायरीन के लिए सभी सहूलियात मुयसर रखने की हिदायत दी। वाजह रहे कि उर्स की तकरीबात जुमेरात 7 अक्टूबर को शुरू हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष ने कहा है कि तंजीमी जिम्मेदारियां वक्त के साथ तब्दील हो सकती हैं, लेकिन रजाकार के बुनियादी फराइज में कोई तब्दीली नहीं आती है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनाकिदा समान समारोह से खिताब

जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनाकिदा सम्मान समारोह से खिताब के दौरान किया। ये तकरीब जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के साबिक प्रभारी तरुण चुग और पार्टी की जम्मू कश्मीर शाखा के साबिक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के एजाज में मुनाकिद की गई थी। इस तकरीब में मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह, असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा, मेमरान पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खटाना के अलावा कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। तरुण चुग को पार्टी के कौमी दफ्तर का प्रभारी मुकर्रर किया गया है, जबकि अशोक कोल अपनी बुनियादी तंजीम आरएसएस में वापस चले गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सियाहत के शोबे की तरक्की को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने डलगेट श्रीनगर में एक आवामी दरबार से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लागत वाले 6 प्रोजेक्टों के काम की शुरूआत भी करवाई। इस दौरान पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और अवामी वफूद के साथ तबादला ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत शफाफ तर्ज हुक्मरानी और तरक्याती एजेंडे पर काम कर रही है। पीआईबी श्रीनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कोल की वालदा नस्बती आशाजी पंडिता फोत हो गई हैं। उनकी आखिरी रसूमात जम्मू में अंजाम दी गई। अनजानी की 10वें दिन की क्रिया 8 अक्टूबर को मुट्ठी घाट जम्मू में अंजाम दी जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि सुनील कोल आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा रह चुके हैं। शोबे खबर के सरबरा अशफाक अहमद शाह, न्यूज एडिटर कौशिकी कश्यप और शोबे के दीगर अमले ने भी सुनील कोल के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए अनजानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आज एकेडमी के सेमिनार हॉल लाल मंडी श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर मारूफ अदीब शायर और कलमकार डॉ अमित रंजन की तसनीफ दारा शुकू द फकीर एंड द थ्रोन ऑफ थॉर्न्स की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने की। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद उदबा तारीख दानों कलमकारों और अदब नवाजों के साथ साथ तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी लालचंद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि प्रोग्राम की निजामत मारूफ ब्रॉडकास्टर अशफाक लोन ने अंजाम दी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इक्तसादी तरक्की को सामाजिक तरक्की से अलग नहीं किया जा सकता है और इसे बदलते हुए आलमी मंजरनामे में बुनियादी हैसियत हासिल है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्या इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और तरक्की दोनों साथ साथ चलकर इतफाक राय शमूलियत और जिम्मेदाराना पॉलिसी साजी के हमरा एक पायदार नमू की बुनियाद बन सकता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरकार ने बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर नवप्रीत सिंह की तुर्किया से मुल्क बदर करने को यकीनी बनाकर एक तारीखी संग मील हासिल किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह ने नवाब विर्क का नाम इख्तियार करके तुर्किया की जाली शहरियत हासिल की और वो लगातार अफगानिस्तान से भारत ड्रग्स बेचता रहा। वजीर ने कहा कि सुराग रसा एजेंसियों ने मजकूरा शख्स का पता लगाकर यह कामयाबी हासिल की है। बांडीपोरा में वुलर मैराथन के तीसरे मरहले के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मैराथन रूट पर कल सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल रहेगी। लोगों से कहा गया है कि वो इस एडवाइजरी पर सख्ती के साथ अमल करें। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जारी ईरानी कप टेस्ट मैच के तीसरे रोज आज खेल खत्म होने तक रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 306 रन स्कोर किए और इस तरह जम्मू कश्मीर की टीम पर 265 रनों की सबकत हासिल की। जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली इनिंग्स में 278 रन स्कोर किए हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली इनिंग्स 237 रन पर खत्म हुई थी। जापान के शहर निशीन में खेले गए मर्दों के एशियन कप T20 क्रिकेट फाइनल मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 211 रन स्कोर किए। पाकिस्तान जवाब में 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 196 रन बना सका। इस तरह भारत ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करके एशियन गेम्स क्रिकेट के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। एशियाई खेलों में भारत की खवातीन हॉकी टीम ने 44 साल के तवील इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 228 में लॉस एंजलिस में मुनाकिद होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सदर जमहूरिया
द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन की कौमी हॉकी टीम को

0: सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। और अब मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:27 और गुरुबे आफ्ताब शाम 6:11 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, शब बखैर।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिछले 2 रोज के दौरान 2 अहम पॉलिसियों को नाफिज करने का ऐलान किया है। कल ऑर्गेनिक फजले को ईंधन और खाद में तब्दील करने की कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी और 1 रोज कबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 नामजद कर दी गई। यूटी में साफ तवानाई को फरोग देने, सर्कुलर इकोनॉमी मजबूत बनाने और ऑर्गेनिक फजले को ईंधन में तब्दील करने की सिमत कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी एक अहम पेशरफ्त करार दी जा सकती है। जबकि माहौलियात के खतरे को जायल करने के लिए बिजली या बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के मंसूबे को मुतारिफ कराया गया। कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी नामियाती फजले को गाड़ियों के लिए सॉफ्ट ईंधन और नामियाती खाद में तब्दील करने का एक जामिया मंसूबा है। इस पॉलिसी का मकसद मुख्तलिफ अकसाम के नामियाती फजले बशमूल मवेशियों का गोबर, म्यूनिसिपल ठोस फजला और फसलों की बाकियात के इस्तेमाल को आसान बनाकर ईंधन और खाद बनाना है। इसके जरिए बयक वक्त फजले के इंतजाम, तवानाई के तहफ़ दीही रोजगार और पायदार ज़रई तरीकों के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिसी की एक अहम खसूसियत सरमायाकारी पर मबनी अखराजात में मुआवनत भी है। पॉलिसी का हदफ 10,000 किसानों तक बायो खाद की तकसीम है। 2032 तक नाफिजुल अमल रहने वाली इस पॉलिसी का मकसद माहौल दोस्त सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल तश्कील देना, साथ ही फजले से तवानाई के हल को फरोग देना और दीही मईशतों को मुस्तहकम करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 1,40,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सड़कों पर लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 6 साला पॉलिसी का मकसद बरकी नकलो हमल को फरोग देने के साथ साथ चार्जिंग बुनियादी ढांचे को वसत देना और जम्मू कश्मीर के मौसमी व जग्राफियाई हालात के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इको सिस्टम तैयार करना है। पॉलिसी के तहत तमाम 20 अजला में 900 अवामी चार्जिंग मकाम कायम करने का मनसूबा बनाया गया है, जिनमें शहरी इलाकों और शहराओं के अहम रास्तों पर 140 फास्ट चार्जिंग मराकज भी शामिल होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी की हौसला अफजाई के लिए अहल खरीदारों को 36 माह तक के कर्जों पर 3-5% तक सूद में रियायत फराहम की जाएगी। माहौल इंसान की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। साफ हवा, शफाफ पानी, जरखैज जमीन और सरसब्ज दरख्त एक सेहतमंद मुआशरे के लिए जरूरी है, मगर आबादी में इजाफे, सन्नतों की तरक्की, गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद और फजले के गलत इंतजाम की वजह से माहौल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। फजाई आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए हमें जदीद और माहौल दोस्त तरीके इख्तियार करने होंगे। नामियाती फजला अमूमन कूड़ा समझकर फेंक दिए जाते हैं। अगर इस फजले को मुनासिब तरीके से तलफ न किया जाए तो ये बदबू, जरासीम और नुकसानदेह गैसों का सबब बनता है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसी नामियाती फजले को मुफीद ईंधन में तब्दील किया जा सकता है। नामियाती फजले से ईंधन बनाने का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे कुदरती वसाइल पर दबाव कम होता है। रिवायती ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला महदूद भी हैं और इनके इस्तेमाल से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर आलूदा गैसेज खारिज होती हैं। इसके मुकाबले में नामियाती फजले से हासिल होने वाली तवानाई माहौल दोस्त मुतबादल फराहम कर सकती हैं। अगर शहरों और देहात में फजले को अलग अलग जमा करने और इसकी रिसाइकिलिंग का मुसबत निजाम कायम किया जाए तो इस शोबे में नुमायां तरक्की मुमकिन है। माहौलियाती तहफ़ के लिए बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों का तआरुब भी एक अहम कदम है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बड़ी मकदार में धुआं और मुजर गैसेस खारिज करती हैं, जो फजाई आलूदगी में इजाफा करती हैं। इसके बरअक्स बर्की गाड़ियां बैटरी से बिजली हासिल करती हैं और चलते वक्त रिवायती गाड़ियों की तरह धुआं खारिज नहीं करती। इनके फरोग से शहरों में फजाई आलूदगी और शोर को कम करने में मदद मिल सकती है। बर्की गाड़ियों के इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार भी कम किया जा सकता है। अगर इन गाड़ियों को शमसी हवा या दीगर काबिल तजदीद जराए से पैदा होने वाली والی بجلی سے چارج کیا جائے تو ان کے ماحولیاتی فوائد مزید بڑھ سکتے ہیں. تاہم ان اقدامات کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی موجود ہیں. نامیاتی فضلے کو ایندھن میں تبدیل کرنے کے لیے جدید پلانٹس اور مناسب انتظام کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ برقی گاڑیوں کے لیے بیٹریوں, چارجنگ اسٹیشنز اور بجلی کے مثبت نظام کی ضرورت ہے. ان مسائل کا حل تحقیق, سرمایہ کاری اور حکومت و عوام کے باہمی تعاون سے ممکن ہے. اگر ہم آج ماحول دوست ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور قدرتی وسائل کا دانشمندانہ استعمال کریں تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف, صحت مند اور محفوظ ماحول چھوڑ سکتے ہیں. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر, ہر گلی, ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: آج تو پارٹی چاہیے,
4: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے.
5: آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی.
3: پیزا پارٹی, یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے.
6: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن, او ٹی پی, سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے.
3: بائے گرلز.
7: دسن سپا انتظ آکاشوانی سری نگر کن اردو نو خبر تفصیل ابینت پن میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگلین وسپو تس گیت سنسو کا ستا پروگرام نے مزہ یوز ٹو محمی نفیہ.

मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज से सामीन शाम के 8 बजे हुआ चाहते हैं पेशी खदमत प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: लीजिए दोस्तों, अगला नगमा दीवाने हुए पागल फिल्म से सुनते हैं, जिसे गाए हैं कुणाल गांजावाला, शान और कृष्णा ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने। पहले ये वक्फे।
1: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, उसे क्लिक पर कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 95.3 پروگرام یعنی نپی نیوز ٹون محمی نفیا میڈیا میں کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پو تو سو یادنا میں نگی شوگی نگا چندو کسات آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردیانو خبرون ریلی بے ریلی لا ڈانگ بازاد
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोज और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
1: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12

0: अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
3: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
4: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
3: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
5: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
3: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने

0: ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही

0: climbed to fourth place in medal tally with 85 medals, including 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल नफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निजाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणरवि उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसके साथ ही भारत सोने के 21 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, बैंककारी इस्लाहात, खिदमात की फराहमी के बेहतर निजाम और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने GST, दिवालिया और दिवालियापन से मुतअल्लिक ज़ाबते और 4 लेबर कोड्स के जरिए मुल्क के इक्तसादी निजाम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 4 बरसों के इक्तसादी सतह पर नामसायद हालात का सामना मजबूत बुनियादी इक्तसादी हालात के साथ किया है। उन्होंने इस ज़िम्न में माली साल 2026-27 की पहली समाही में हकीकी GDP की 7.8% शरह तरक्की का जिक्र किया। वजीर खजाना ने कहा कि बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF के अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर कर्ज में इजाफे के रुझान के बरअक्स भारत के मजमूई सरकारी कर्ज का तनासुब GDP के मुकाबले में 2026 में 83.4% से कम होकर 2031 में 77.7% रहने का इम्कान है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मवेशी परवरी के शोबे के लिए एक मुकम्मल इको निजाम तैयार कर रही है। इसके तहत गोबर से बायोगैस और नामियाती खाद तैयार करने से लेकर डेयरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और उन्हें मंडी तक पहुंचाने की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि देही मईशत को नई रफ्तार फराहम की जा सके। भोपाल में रियासती सतह के गौपालक सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। मुल्क में फौजदारी इंसाफ के निजाम में इस्लाहात का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के मुकम्मल नफाज के बाद भारत का फौजदारी इंसाफ का निजाम दुनिया के जदीद तरीन निजाम में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि BNS के मुकम्मल नफाज के बाद FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात का फैसला 3 साल के अंदर किया जा सकेगा।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की

0: इमारत और सेंट्रल विस्टा के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: सेंट्रल विस्टा जदीद तरक्याती प्रोजेक्ट नई दिल्ली में मरकजी इंतजामिया और शहरी इलाके को नए सिरे से तैयार करने का एक बड़ा मनसूबा है। इस मनसूबे का मकसद सरकारी कामकाज को ज्यादा मुअसर और आसान बनाना है। इसके लिए सरकारी दफातर को जदीद, बेहतर और जरूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तमाम 51 वजारतों, 10 कामन सेंट्रल सेक्रेटरियट में यकजा किया जाएगा। इससे अफसरान और मुलाजमीन सरकारी दस्तावेजात और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकेंगे। नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। नई पार्लियामेंट की इमारत की तामीर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हासिल किए गए सामान और मवाद का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए की अक्कासी करता है। इस इमारत में अब सेंगुल है, जिसे इक्तदार की मुंतकली की अलामत समझा जाता है। इस इमारत के 6 दाखिली दरवाजे हैं, जिनके नाम कदीम रिवायती मखलूकात के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें गच, अशु, ग्रोन, मकर, शार्दुल और हंस शामिल हैं। नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों की उम्मीदों और ख्वाबों की अक्कासी करती है।
2: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
1: माहौलियात के लिए साजगार होना इस मरकजी मंसूबे का अहम जुज है। इस मंसूबे के आसपास के पूरे माहौल को सरसब्ज और शादाब रखने में काफी मुआवनत हासिल होगी। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी के सत्यवेदु मंडल में एक बॉयलर के फटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। 2 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 को शदीद जख्मी हालत में करीब के अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जिनमें से 2 दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दीगर मजदूरों को इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर इंतहाई गम का इजहार किया है। उन्होंने सीनियर हुकाम को मुतासर अफराद के अहले खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। गवर्नर एस अब्दुल नजीर ने महलूकीन के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया है और जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश जाहिर की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि आलमी सतह पर कशीदगी के मौजूदा दौर में, जब हर मुल्क कम मकदार में गोला बारूद और तैयारों के साथ साथ ऑपरेशनल निजाम और महदूद लॉजिस्टिक जराये के साथ काम कर रहा है, खुद किफालत आज की एक बुनियादी जरूरत है। नई दिल्ली में फजाइया के चौरानवीं योम तासीस से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फजाइया के सरबराह ने कहा कि खुद किफालत हासिल करने के लिए काफी कोशिशें की गई हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस ताल्लुकात से मुतालिक मशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और रूस के दरमियान कसीर जहती तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, राबिताकारी, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबी जैसे शोबे शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन तनाजे के खात्मे के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी के लिए भारत की हिमायत को उजागर किया। वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों के मुताले के लिए महारत के 5 मराकज कायम करने को मंजूरी दी है। ये मराकज क्लासिकी आसामी, क्लासिकी बंगाली, क्लासिकी मराठी, क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत जबानों के लिए कायम किए जाएंगे। इन मराकज का मकसद इन जबानों पर आला सतह की तहकीक, कदीम जबान व अदब को डिजिटल शक्ल में महफूज करना और इन जबानों के बारे में मालूमात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में आवाम की हिफाजत, अमनो अमान और गाड़ियों की बिला रुकावट आमदो रफ्त को यकीनी बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफा 163 नाफिज है। एक अवामी नोटिस में नई दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि गैर मजाज इज्तिमाआत, अवामी तकारीर, नारेबाजी, जुलूस, मुजाहरे, धरने और दीगर मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। पुलिस ने मजीद कहा कि आज के लिए किसी भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है और न ही ऐसे किसी एहतजाज के बारे में नई दिल्ली जिला पुलिस को पहले से कोई इत्तला

भारत ने जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सोने के 5 चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और 2028 में लॉस एंजलिस में मुनक्किदा होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने T20 फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मर्दों के 57 किलोग्राम के जुमरे में शुमाली कोरिया के आलमी चैंपियन चुंग सॉन्ग हान को फाइनल में 11-7 से शिकस्त दी। खवातीन के इंफरादी तीरंदाजी मुकाबले में कुमकुम महोद ने सोने का तमगा जीता। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने खवातीन के इंफरादी खिताब में एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने भी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। पहलवान अंतिम अंगल ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दीपक पुनिया ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे में मंगोलिया के गैन क्वांगेंग बाजार को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तमगों की फहरिस्त में भारत चौथे मकाम पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद 85 हो गई है, जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। ने कहा कि यह कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मर्द और खवातीन दोनों टीमें चैंपियन हो गई हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलापुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलावामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 87 गेंदों में शानदार 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने अपना पहला एक रोजा बैन अलावामी मैच खेला। इसी तरह नीतीश रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज भी सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 31 ओवर्स में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल निफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निजाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने

0: ni fayul program sa bakhanuni khidmat la assalam alaikum yale program sa bakhanuni ta wasinot ngache ji program panuk zille kargili yulunanuk sonse de yulis kor la ngati sharma sunje nikana trisur yanta sa palhep chupat dyana zum se dring ngacha baru halep so dika haji zakir husain zille kargili anum yung yung shakhsiyat chin haji sahib gana trisur yanta sa palhep chupat haji sahab assalam alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bakhshe ju haji zakir zarengati district kargili anu yarang ngonyot pi shakhsiyat chin ju loi cham nun ju ara
1: हंगलो पे इंजुआ गाती सभी का हंगलो पे इन धरे 75 साल लगा डूली ने 74 गांव सीन 75 साल डूली ने छाना तुस्कोर ना लोसुम डूली ने पे
0: जैसे नसो छाना हाजी साहब यरंग सिहा तंग मनर गला तो छाना हाजी साहब सब बजे साल ला गति शर्मा सुन से निकल ना यरंग 75 साल यरंग नसो सों यरंग मना गार से गार लहले भी मी इंजु बरु जे दो पजो दि बरु ची के नजर इन गति शर्मा ने कने सुनसे तना यरे शिक्षा कोशिश बास बाबा दि बरु ची नजर इन
1: का सजु बरु मन दुंपा युलमेन सुख जुया अच्छा बरु बच दुन ला संगरा जरबान नकार से जरबान दे ति ची कचिक ना आवाज उठ खाने सुख छन बरु जरबना बरो जर खान रोक पे खाने सुख बरो जर खान बरो बरो जर खान पो खोयो सुगे रंगा इन चाहो पाकिस्तानी ओसन सु पाकिस्तानी ओसन को युल चे चजिन मिन सु सारा इन दोखर चना को चजिन मिन सु गया यो मना बरी के छमिक छियो पिन सु बरी के छमिक छियो पिन सु पादे का खो छा छ ना खो तो शेरपा युत बना खो तो ना छ तब से ना सों सु को ना छ फोस ना सों से को जिक जिनि छ को एन लोख से ना यानी दो ला स्मिमा पिन से दे नस पस मिन सु लेरा ना स्मिन युत बना खो समसुक दिके युल छा जा इन सु हां देखे नो को देखा दिया छुमिक पे कहे खोस खोरे से बसे बसो को दुकान से जो देखे ना बरो ला बरो सों से सुख गाना सोर भी हिसाब पो अता पो ने गाना सोर भी हिसाब पो दिया इन सुख
0: छना बरो एक ना बरो सों से जो हाजू
1: बरो एक ना बरो
0: बसे ता बरो जरे दरेंगे ते या दिया नो को ग्रोंपे के सना लचाम से पे सुख या घर घर ना यों से दिका सुख खाने सुख
1: ता ना ची अतोपे हिसाबी कता जंग सोशो मोशन चाम बेदे ता जंग ची जा अतोपे ने छोड़ रे हिसाबी का ना ची दिका ग्रोंपा नी सुतें सुजु स्नान ग्रोंपा चिक चिक देर गबना दोला ग्रोंपा नी सुम जुक चिक पला पलदे जर ब चिक पला जंग दे जर ब सुजु कसा निस्का अजुनो इन सुकुंग निस्का इन ना दिका चिक पदुक पत्रु ना ची आका बरस जरे चिक ने निगत यरंगा चिक पदे का दुपत पिन सु चिक पदी के योग पे दुपत पिन सु
0: अच्छा
1: छुचिक सों सुख पा आपो जानदे आपो फ्यान सों सुख
0: आपो दुखन पो
1: खतो दुखन पो को फ्यान सों सुख पा आपो पले मसों जर सुख मसों जर सुख पा थांगा दी के सोंजा मसों यांगा छे देने को सों से ना पाकिस्तानी मलसा चिगा शिगारी दे कोचे को दुख सुख बया तने दी के पिचो के ना चेराश
0: बासिस
1: चेरा जो पिचो जो पासकी में चोय पिचो यांगा दरे ने सा का रलम जरन चिक जिंग जियो यांगा ते लुक्षी पा जें जि महले देका कौन सी बात हम मत सुख ये देखा

पंदे नुक दे दे चना बुरसे उरसे दे सखेर बे मत दे खाने दे सखेर बे मत लंकुर लंकुर ला नाचा फेरा चाम सो खूब नरम मरे फेरा ताने चाम सो कोई कना कोस कोस खाने देगा या मेटा सो स्पिन या कोस कोस स्पिन अच्छा छाना देगा तां सिरिंग मुस्पन छप्पा नची बरी ने न्या दु अता पोन जा शिबा दुकान सु बल्कि देश फेरा दुख छु कुर्बतान का मा ची बरी हम कुर्बतान दरे अलग सो सिंदे मैंने अच्छी बरी नंबर दारी इंदे कुर्बतान का